103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

जो मनुष्य क्षमा करना जानता है ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक खुश रहते हैं। मन में क्रोध और शिकायत रखने से केवल दुख बढ़ता है, जबकि क्षमा मन को मुक्त कर देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। इसलिए अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा और कोई दान नहीं है। क्षमा करने से हमारे भीतर किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं रहते और हमारा मन शांत होने लगता है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गणपति जी की इस आराधना से।

भोलेनाथ शिवशंकर की महिमा अपरंपार है, वो सदा ही अपने भक्तों के प्रति दयालु बने रहते हैं। तो आइए हम भी उनकी महिमा का गुणगान करें।

जगत जननी माँ जगदम्बा बड़े ही दयालु भाव की है। वो अपने भक्त की एक पुकार पर उसके कल्याण के लिए हमेशा उपस्थित रहती है।

मनुष्य जब पूजा और भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो व्यवहार में दया विनम्रता आने लगती है और दूसरों के प्रति वो करुणा भाव अपनाने लगता है।

इस संसार में जिस किसी ने भी श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त कर ली उसका कल्याण निश्चित है। ऐसे प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान करें।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है।

एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मानस गान। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आनंद लीजिए हिमाचली लोक गीतों के कार्यक्रम शुभ ब्याग का। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं। सुबह 8:00 समाचार प्रभात में 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत और 8:45 पर कानून की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:00 आज आप सुनेंगे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि और 9:20 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00 और 10:30 पर। आनंद लीजिए पहाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। पंजाबी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 11:05।

हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत में शाम 5:10 पर हम आपको सुनवाते हैं भजन और 5:25 पर आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम। सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनते हैं शाम 6:05 पर और 5:30 पर सुनिएगा मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। किसान बागवान श्रोता खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे 7:10 पर। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे विधानसभा समीक्षा और 8:15 पर आप सुनेंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर सुनिएगा कुछ देशगान और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, और रात्रि 9:00 आप सुन पाएंगे News@9। 9:15 पर होगा एक ही कलाकार कार्यक्रम, जिसमें आज आपसे बात होगी संगीतकार खयाम की।

गूंज पहाड़ों की हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर और रात 10 बजे। सुनना ना भूले लाइव फोन इन प्रोग्राम, आपकी पसंद गीत हमारे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निजक्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसन्धानक्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विकवातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
1: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य विंशति नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्धप्रतिस्पर्धात्मकक्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढम् अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस देशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिक यात्रायै मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह, नया दिन, नए सपने, नई उड़ान, यही तो है एक खुशहाल जीवन की पहचान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार लिसनर्स, ट्यून इन है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां एक बार फिर से आ गई है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम सुबह सुहानी को लेकर। हर रोज की तरह आज भी शुरुआत करेंगे सुविचार से। श्रोता, जिंदगी जितनी सादा होगी सुकून उतना ही गहरा होगा। जी हाँ, सादगी से जीवन बिताने वाला शख्स हमेशा निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना तो किसी को पीछे छोड़ने की जो है वो जलन रहती है, और ना ही किसी की बराबरी करने की लालसा। और यही बातें उसके जीवन को सुकून से भर देती है और औरों के कंपैरिजन में और भी बेहतर बना देती है। तो चलिए भाई, आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, और बाकी की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपका मनोरंजन करने के लिए रोजाना लेकर आते हैं बेहतरीन से प्रोग्राम। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इस म्यूजिकल नंबर से। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। प्रोग्राम है सुबह सुहानी।

वेल लिसनर्स, जिस लड़की की आप ढूंढे जा रहे हैं वो तो इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है आप सभी का मनोरंजन करने के लिए और लेकर आई है सुबह सुहानी प्रोग्राम। जी हाँ, आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और चलिए लिसनर्स, टटोलते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है खास और नया। जी हाँ, 24 अगस्त 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा और वहीं पर 1690 में जॉबनार चौक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत की राजधानी बना।

बात करें 24 अगस्त 1969 की तो इस दिन वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए। वहीं साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को मंजूरी आज ही के दिन दी गई थी। शुद्ध 24 अगस्त साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे बोना ग्रह मान लिया गया। वहीं साल 2000 में हिंदी फिल्मों के संगीतकार कल्याण जी का निधन आज ही के दिन हुआ। वहीं 1993 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी डीबी देवधर इस दुनिया में नहीं रहे थे और आज उन्हीं के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी खेली जाती है। बात कर लेते हैं उन शख्सियतों की जिनका आज जन्म हुआ। 24 अगस्त 1908 को भारत के महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु का जन्म हुआ और उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। साल 1997 में भारत की स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का भी जन्म हुआ। सुबह सुहानी प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा और साथ ही साथ बातों के साथ आपका मनोरंजन हम गीत संगीत से लगातार करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिन है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। जी हाँ, हमारी स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो चुका है सुबह के 7:24:45। दोस्तों, कभी आपने क्या सोचा है कि हमारी लाइफ में हमारी अपनी बेसिक्स जरूरतों के अलावा हम और क्या चाहते हैं? तो करीबन सभी का एक ही जवाब होगा, मुस्कुराता हुआ, खुशियों से भरा हुआ जीवन, जहां मन में सुकून हो। लेकिन अक्सर होता क्या है ना कि हम रोजाना के कामकाजों के बीच में जिंदगी में नएपन का तड़का लगाना बिल्कुल भूल जाते हैं। इसके लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अपनी खुशी के रास्ते में आने वाली हर बुरी सोच से खुद को दूर रखें, जितना ज़्यादा हो सके खुद को प्रकृति के नज़दीक रखें। जी हाँ लिसनर्स, नेचर से आपका ये संपर्क आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देता है। प्रकृति हमारे अंदर नई नई उम्मीदें, नई ताजगी भर देती है, जिससे हम नए सपने बुनते हैं और हंसना मुस्कुराना बरकरार रख पाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि हंसना मुस्कुराना भी एक कारगर दवा का काम करता है। इसे रोज लेते रहने से जिंदगी में एक नयापन रहता है। हमेशा हंसता हुआ इंसान निराशा से कोसों दूर रहता है। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। तो आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे दोस्तों का एक ग्रुप जरूर रखें जो हंसने मुस्कुराने में माहिर हो। इससे एक तो क्या होगा कि आप कभी उदास नहीं होंगे और दूसरे आपकी लाइफ में हमेशा ताजगी और नयापन बरकरार रहेगा। तो चलिए भाई, हमारे लिसनर्स को भी उदास होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए हमेशा ही मौजूद रहते हैं और कुछ बेहतरीन से सॉन्ग्स आपके लिए प्ले करते रहते हैं।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ आप बने हुए हैं और इस वक्त सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। चलिए अब लिसनर्स आपको लिए चलते हैं कुछ आज की ताज़ा तरीन हलचलों की तरफ और आपको बताते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप पर अपना विश्वास जताते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए सदस्यों को इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। वहीं रक्षा मंत्री द्वारा युद्धपोतों और जहाज निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और इसे और मजबूत बनाने की बात की। बात करें खेल जगत की तो आपको बता दें कोलंबो टेस्ट के पहले दिन भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से 300 रन की जो है वो बना लिए हैं। बात करें डोरंट कप फुटबॉल की तो ईस्ट बंगाल ने फाइनल मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 17वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ महिला हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम में और भी आपके लिए हमारे पास मौसम की अपडेट है, लेकिन पहले सुनेंगे ये गीत। आप यूं ही जुड़ी रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए सर, चलते चलते बात कर लेते हैं मौसम की। तो मॉनसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों का अनुमान लगाया गया है। देश के अधिकतर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर नदी नाले उफान पर है और जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतर जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो चलिए भाई, मौसम तो हिमाचल में हमेशा ही सुहावना सा बना रहता है, लेकिन इस मौसम को और भी बेहतर बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जी हाँ श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।
1: सुबह सुहानी।
0: तीन दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनते हैं स्मोह स्वरों में।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। कार्यक्रम का अगला लोक गीत आइए सुनिए भुवनेश्वरी तनवर की आवाज में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए, और 8 बजे कर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। कीजिए बस कुछ पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।

0: प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता।

0: अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenidza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
4: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the

0: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। प्रोग्राम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फिल्म है संगम।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो

छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री 420 फिल्म से। जी हाँ, इस गीत में आवाजें दी हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश ने।

देसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आज विषय है LACMS पोर्टल, लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप एवं हेल्पलाइन नंबर 1500। विशेषज्ञ श्री कुलदीप शर्मा, माननीय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भेंट करेंगे अनुज कुमार। ये कार्यक्रम DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं माननीय न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री कुलदीप शर्मा जी। सबसे पहले तो स्वागत है माननीय न्यायाधीश महोदय।
2: धन्यवाद अनु जी।
1: जी, आज हमारा जो विषय है LACMS पोर्टल, नालसा लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप एवं हेल्पलाइन नंबर 15100। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये क्या है और क्या इसकी महत्ता है।
2: अनु जी, जो आज की हमारी वार्ता का विषय है, नालसा का LACMS पोर्टल लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100। आज के डिजिटल युग में विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को जिला न्यायालय या किसी कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा ने तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न डिजिटल माध्यम विकसित किए। इनके माध्यम से पात्र व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है, अपने आवेदन की स्थिति जान सकता है, कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने मामले से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि कानून और न्याय तक पहुंच केवल साधन संपन्न लोगों की ना रहे, बल्कि गरीब, ज़रूरतमंद और कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति भी आसानी से न्याय प्राप्त कर सके। नालसा के अनुसार निःशुल्क विधिक सेवाओं में कानूनी सलाह, अधिवक्ता की सेवाएँ, न्याय कार्रवाई में प्रतिनिधित्व तथा अन्य आवश्यक विधिक सहायता भी शामिल हो सकती हैं।
1: जी कुलदीप जी, अगर हमारे श्रोता को सरल भाषा में आप बताना चाहें तो LACMS क्या है?
2: LACMS का पूरा नाम है लीगल एड केस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात विधिक सहायता मामलों के प्रबंधन की प्रणाली। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब किसी पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है तो उस मामले को व्यवस्थित रूप से संभालने, संबंधित अधिवक्ता को मामला सौंपने, मामले की प्रगति पर नज़र रखने और विधि सेवा संस्थानों द्वारा उसकी निगरानी करने के लिए LACMS एक डिजिटल माध्यम के रूप में

0: करता है। विशेष रूप से लीगल एड केसेस के मैनेजमेंट के लिए विकसित किया गया है और नालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसके माध्यम से मामलों की प्रगति की निगरानी कर सकती हैं।
1: जी, आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि LSMS और लीगल एड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है?
0: देखिए, दोनों की भूमिका अलग अलग है, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। LSMS यानी लीगल सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से नागरिकों को ऑनलाइन विधिक सहायता के लिए आवेदन करने, आवेदन की स्थिति देखने तथा रिमाइंडर्स या क्लैरिफिकेशंस भेजने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी ओर LACMS यानी लीगल एड केस मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से विधिक सहायता से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से संबंधित विधिक सेवा संस्थान मामलों की प्रगति की निगरानी करती हैं और अधिवक्ताओं को मामले सौंप सकती हैं। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो LSMS आवेदन तक पहुँच को आसान बनाता है, जबकि LACMS विधिक सहायता के मामलों के प्रबंधन और निगरानी को व्यवस्थित करता है।
1: जी कुलदीप जी, लीगल एड केस मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आम नागरिकों को इससे कैसे लाभ होता है?
0: देखिए, इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो है पारदर्शिता और बेहतर केस मैनेजमेंट। विधिक सहायता के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि आवेदन के बाद क्या कार्रवाई हुई, मामला किस स्तर पर है और संबंधित अधिवक्ता को मामला सौंपा गया है या नहीं, इन बातों की प्रभावी निगरानी हो। LACMS के माध्यम से विधिक सेवा संस्थाएं किसी मामले की प्रगति को मॉनिटर कर सकती हैं तथा संबंधित अधिवक्ता को सौंपे गए मामलों को ट्रैक कर सकती हैं। इससे विधिक सहायता की व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनती है।
1: जी देखिए, आजकल जैसे ऐप का ज़माना है, ट्रेंड चला हुआ है, और नालसा की भी मोबाइल ऐप है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अनु जी, जो नालसा का लीगल सर्विस मोबाइल ऐप है, ये नागरिकों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से विधिक सहायता और विधिक सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाना है। ऐप के माध्यम से व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, कानूनी सलाह से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकता है और अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकता है। लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध कराया गया है और इसके माध्यम से लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग तथा विक्टिम कॉम्पनसेशन जैसी सुविधाओं तक पहुंच बनाई गई है।
1: तो इससे समझा क्या जाए कि व्यक्ति को अब न्यायालय तक जाने की जरूरत नहीं है?
0: बिल्कुल, अब आज के समय में व्यक्ति के पास बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हो गए हैं। वे अपनी सुविधा के अनुसार अगर चाहे तो संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में व्यक्तिगत रूप से भी जा सकता है, लिखित या मौखिक रूप से आवेदन कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, नालसा के डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकता है, नज़दीकी लीगल एड क्लिनिक से सहायता ले सकता है अथवा 1500 पर कॉल करके विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए डिजिटल माध्यमों ने विधिक सहायता को लोगों के घर द्वार और मोबाइल फ़ोन तक पहुँचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, जैसे आपने इस नंबर का जिक्र किया 15100, क्योंकि हमारे जो सभी जो पीड़ित होते हैं कई बार हर तरह के मोबाइल ऐप चलाने में सक्षम नहीं होते, तो इस नंबर को बारे में थोड़ा हमें बताइए।
0: जो 1500 जो नंबर है, ये नालसा का राष्ट्रीय टोल फ्री विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर है।
1: जी,
0: यदि किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी चाहिए, वह किसी कानूनी समस्या में सहायता चाहता है या निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना चाहता है तो वह 1500 पर संपर्क कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वयं किसी अधिवक्ता से संपर्क करने की स्थिति में नहीं है
1: जी,
0: या जिन्हें पता नहीं है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्हें किस विधिक सेवा संस्था से संपर्क करना चाहिए। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि किसी कानूनी समस्या को लेकर असमंजस में ना रहें, 1500 याद रखें।
1: जी, ये जो 1500 की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ मुकदमों से संबंधित ही मदद दी जाती है?
0: नहीं, विधिक सेवा का अर्थ केवल अदालत में चल रहे मुकदमों के लिए वकील उपलब्ध करवाना ही नहीं है। निशुल्क विधिक सेवाओं में कानूनी सलाह, कानूनी कार्रवाई में सहायता, अधिवक्ता की सेवाएं, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी

0: जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी के पीड़ित, दिव्यांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, औद्योगिक कामगार,
1: जी
0: हिरासत में रखे गए व्यक्ति तथा आपदा या अन्य विशेष परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं। आय के आधार पर भी निर्धारित पात्र व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हो सकते हैं और इसके लिए जो आय सीमा तय की गई है वो 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण पीछे नहीं हटना चाहिए कि वह वकील की फीस नहीं उठा सकता।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, जैसे आपने बताया कि परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति निजी वकील भी रख लेते हैं, तो क्या जैसे ये निःशुल्क कानूनी सहायता की हमने बात करी, तो क्या वो आगे चलकर वो ये प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए, यदि व्यक्ति धारा 12 के अंतर्गत पात्र है तो वो मामले के किसी भी चरण पर परिस्थितियों के अनुसार निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। नालसा की स्कीम्स के अनुसार पात्र व्यक्ति अपील के चरण पर भी विधिक सहायता मांग सकता है, भले ही उसने पहले निजी वकील की सेवाएं ली हों। इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि यदि मुकदमा शुरू हो गया है तो अब विधिक सहायता नहीं मिल सकती।
1: जी ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि विधिक सहायता तब भी प्राप्त की जा सकती है, और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को सिर्फ कानूनी सलाह चाहिए, वह कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो क्या तब भी विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी मदद करती है?
0: जी हाँ, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। निशुल्क विधिक सेवा का अर्थ केवल अदालत में मुकदमा लड़ना नहीं है, कानूनी सलाह भी विधिक सेवा का हिस्सा है। कई बार सही समय पर अगर सही कानूनी सलाह मिल जाए तो विवाद अदालत तक जाने से पहले ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को अपने अधिकार, किसी दस्तावेज, नोटिस, संपत्ति, पारिवारिक विवाद या अन्य कानूनी विषय में मार्गदर्शन चाहिए तो वह विधिक सेवा संस्था से संपर्क कर सकता है।
1: जी कुलदीप जी, इसमें आगे आपसे बात करें तो क्या नालसा के जो डिजिटल माध्यम जैसे आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या विक्टिम कंपनसेशन के लिए भी सहायता मिल सकती है?
0: जी हाँ, नालसा के लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप की ये जो प्रमुख सुविधाएं हैं उनमें विक्टिम कॉम्पनसेशन से संबंधित आवेदन की सुविधा भी शामिल है। अपराध के पीड़ितों को कानून के अनुसार उपलब्ध क्षतिपूर्ति योजनाओं और अन्य विधिक सहायता के बारे में जानकारी तथा आवश्यक प्रक्रिया में सहायता विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके लिए वो डिजिटल माध्यम का उपयोग भी कर सकते हैं।
1: जी किसी व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उसे उस स्थिति का कैसे पता चलेगा कि आवेदन कहाँ तक पहुँचा है या क्या आगे कार्रवाई उसमें हुई है?
0: अनुजी, डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये भी है, नालसा की प्रणाली में आवेदन की जो ट्रैकिंग है उसकी सुविधा उपलब्ध है। LACMS, LSMS के माध्यम से आवेदन या मामले की स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है। इससे व्यक्ति को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार बार किसी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: जी कुलदीप जी, क्या व्यक्ति को इन सब चीज़ों को या इन माध्यमों का उपयोग करने के लिए तकनीकी रूप से बहुत उच्च स्तर का होना होता है?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि तकनीक लोगों के लिए सुविधा बने, बाधा नहीं। और यदि फिर भी किसी व्यक्ति को अगर ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई होती है तो वह लीगल एड क्लिनिक, पैरालीगल वॉलंटियर्स या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से भी सहायता ले सकता है।
1: जी यदि किसी व्यक्ति को यह भी पता नहीं है कि उसकी समस्या किस कानून से संबंधित है, तो क्या इसकी भी उसको मदद मिल जाती है?
0: जी बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति में उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति 1500 पर फ़ोन कर सकता है या फिर अपने निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण या लीगल एड क्लिनिक में जाकर अपनी समस्या बता सकता है। कानूनी विशेषज्ञ या विधिक सेवा कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे उपलब्ध कानूनी उपायों और आगे की प्रक्रिया के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, ये जितने भी हमने डिजिटल माध्यम या डिजिटल सुविधाओं के बारे में आपसे जाना, तो क्या इससे कोई व्यापक परिवर्तन भी आ रहा है न्याय व्यवस्था में?
0: जी बिल्कुल, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है। डिजिटल माध्यमों से एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और जो एफिशिएंसी है उसमें सुधार होता है। व्यक्ति को आवेदन करने, उसकी स्थिति जानने और विधिक सहायता तक पहुंचने के लिए अधिक सरल माध्यम उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर विधिक सेवा संस्थाओं को भी मामलों की निगरानी, अधिवक्ताओं को मामले सौंपने और सेवा प्रदाय की स्थिति को व्यवस्थित रूप से देखने में बहुत सहायता मिलती है। इस प्रकार तकनीक का उद्देश्य न्याय का स्थान लेना नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुंच को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
1: अब इस कार्यक्रम में क्योंकि समय भी हो रहा है, तो हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक रहें, आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने से संकोच ना करें।

0: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कानूनी समस्या से जूझ रहा है और आर्थिक या अन्य कारणों से अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने में कठिनाई हो रही है तो निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या निकटतम विधिक सहायता क्लिनिक से संपर्क करें। आज हमारे पास डिजिटल माध्यम भी उपलब्ध हैं। नालसा के लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 1500 पर संपर्क भी किया जा सकता है।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। न्याय की जो पहुंच है वो तकनीक के माध्यम से सब तक पहुंचनी चाहिए और सरल माध्यम से पहुंचनी चाहिए। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ये था कार्यक्रम कानून की बात। आज विषय था LACMS पोर्टल, लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप एवं हेल्पलाइन नंबर 1500। विशेषज्ञ श्री कुलदीप शर्मा, माननीय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भेंट कर रहे थे अनुज कुमार।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। जी हाँ, सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और आज है मंडे मॉर्निंग का दिन और आप सभी हफ्ते भर की थकान को मिटाकर फुल एनर्जी के साथ अपने अपने कामों पर लग चुके होंगे। जी हाँ, किसी को अपने घर के कामों को निपटाने की जल्दी, तो किसी को ऑफिस जाने की, और कोई अपने रूटीन पर लौटने के लिए तैयार है। तो लिसनर्स, भला ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम भी एकदम तैयार है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए लेकर गीतांजलि प्रोग्राम। वेल लिसनर्स, आप सभी जानते हैं कि आज का गीतांजलि प्रोग्राम रहने वाला है आप सभी की ईमेल पर बेस्ड। तो चलिए भाई, जिन लिसनर्स ने अभी तक हमें मेल नहीं किया है वो फटाफट से हमें मेल कर दीजिए musicmaildishala@gmail.com पर, या फिर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बस मैसेज टाइप करना है अपने नाम अपनी लोकेशन के साथ और उसे सेंड कर देना है musicmaildishala@gmail.com पर। तो चलिए भाई, हम भी बिल्कुल भी देरी ना करते हुए सिलसिला शुरू करते हैं आपकी ईमेल्स को पढ़ने का। और देखिए, जैसे ही मैंने अपना मैसेज बॉक्स ओपन किया ना, आपने भर भर के जो हमें प्यार भेजा है ना, उसे देखकर हमारा दिल भी एकदम से गदगद होने लगा है। प्रोग्राम की पहली मेल को शामिल करते हैं और आप सभी को बता देते हैं कि ये मेल हमें कहां से भेजा है। जी हाँ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मेल किया है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मेल भेजा है। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़ की। ये सभी सुना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। सादर सप्रेम नमस्कार, ये लिखकर भेज रहे हैं हमें बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से आपका रेडियो दोस्त अरुण कुमार मालविया, सरिता मालविया। और इनके साथ ही अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई जिला छत्रपति औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमें मेल किया है। मेल करने वाले हैं अनिल कुमार गोड़ के, विशाली गोड़ के, प्राजक्ता गोड़ के, वैष्णवी गोड़ के, गायत्री गोड़ के और इनके साथ ही है यज्ञेश गोड़ के। नवाब शहर पंजाब से हमें मेल किया है गगनदीप थानदी, तृप्ता कुमारी थानदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी थानदी ने। और ये हमें लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कर दीजिए। तो चलिए भैया, आपके नाम तो हमने शामिल कर लिए और अब आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत भी हो जाए। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए गीतांजलि। जल्दी जल्दी से मेल हमें भेजते रहिए और आपकी फरमाइश को हम यहां से पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
1: मलमल वाला कुर्ता रंग फिरोजी था, उस पर कातिल एक

जी हाँ, ई मेल बेस्ड प्रोग्राम आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और प्रोग्राम में आपकी मेल जो है हमें लगातार मिल रही है, और जल्दी से आपकी मेल को शामिल करते हैं। अगली मेल हमें मिली है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। ये मेल किया है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने। और इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है तहसील मंगरूर पीर जिला वाशिम से, और मेल करने वाले हैं योगराज मस्के, श्रीहरि मस्के। जी हाँ, इनके साथ ही है इंदुवती मस्के, मल्हार मस्के, कविता मस्के, मोहन मस्के, विशाल मस्के, कुशाल मस्के, गोपाल मस्के, और इनके साथ और जो नाम हमें दिखाई दे रहा है वो है गोविंद मस्के का। कोई सा भी गीत हमें सुनवा दीजिए, ये लिखकर भेज रहे हैं हमें मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष राज। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। मेल करने वाले हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम करम, और इनके साथ ही है चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री। दत्तरेंगी भाटागर नगर छत्तीसगढ़ से मेल किया है हमें मनीराम पाल, मक्खन सिंह पाल और सुधांशु पाल ने। इनके साथ ही है हिमांशु पाल भी। ये सभी सुना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। हमारी पसंद का ही कोई सा भी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभी शाह, अश्विनी शाह, और इनके साथ ही है मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांधी चौक बारमेड़ राजस्थान से मेल किया है बबलेश पवन।

डैनी पवार, मनीषा पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डंगरी से बाबूराम जायसवाल। चलिए आप तमाम लिसनर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और आप सभी के लिए प्ले करते हैं ये गीत। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

इसमें ऐसे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। और अगली मेल जो हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है ज़िला नांदेड़ा इताला महाराष्ट्र से। मेल करने वाले हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, इनके साथ ही है अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। प्रोग्राम में अगली मेल हमें मिली है पश्चिम सिंह भूप झारखंड से। मेल करने वाले हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इसके साथ ही अगली मेल जो हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। मेल करने वाले हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। और इसके अलावा एक और मेल हमें दिख रही है वो हमें मिली है छबिलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और गायत्री कश्यप। पद्मावत फिल्म से गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है और ये हमें मेल कर रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, माही पूजा, शरद कुमार और डोडवानी से प्रदीप कुमार साहू और इनके साथ ही है पूरा मखीजा परिवार। तो आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं पद्मावत फिल्म का ये गीत।

जैसी गीत के लिए अगली मेल हमें मिली है मुल्तानी ढांडा से, और मेल करने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसके साथ ही सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोढ़े और आम्रपाली हमें मेल कर रहे हैं, वो भी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत।

जी हाँ, इसी गीत के लिए हमें एक और मेल मिली है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मेल करने वाले हैं नाना जी। लाम से मीना, लाम से तेजस जय, लाम से हर्षिता, लाम से।

श्रोताओ, ईमेल पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। और प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सुन पाएंगे गीतांजलि प्रोग्राम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों व युवाओं से करेंगे संवाद। धर्मशाला में भी कार्यक्रम। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तीसरी बैठक आज। दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र में कई मुद्दों पर तप सकता है सदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रदेश के बाजारों में बढ़ने लगी रौनक। विशेष बच्चों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई राखियां बनने लगी आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर हमारे जिला संवाददाता ने कहा कि
1: राष्ट्रीय खेल दिवस पर इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन धर्मशाला में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल एवं फिटनेस से जोड़ने के साथ साथ खेल क्षेत्र के विकास, प्रतिभा संवर्धन, खेल प्रशासन तथा विकसित भारत 2047 को लेकर युवाओं के विचारों और आकांक्षाओं को सामने लाना है। स्थानीय खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं के साथ संवाद तथा युवा संवाद के आयोजन के माध्यम से खेलों को लेकर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी प्रतिभा व विचारों को मंच देने का प्रयास किया जाएगा। माई भारत केंद्र कांगड़ा के उप निदेशक ध्रुव ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से धर्मशाला से युवाओं और खिलाड़ियों के बीच खेल फिटनेस तथा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर संवाद को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज तीसरी बैठक है। एक दिन के अवकाश के बाद सत्र की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। शुरुआती दो दिनों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला था। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों, बेरोजगारी, आपदा से नुकसान, सड़कों की बदहाली और जनहित के अन्य मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें विधायक कई अहम मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होगी। मॉनसून सत्र की कार्यवाही 2 दिन काफी हंगामेदार रही है। सदन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई थी, लेकिन भाजपा विधायकों द्वारा वंदे मातरम गाने की मांग को लेकर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही 2 दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज भी पक्षी भाजपा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का मुद्दा सदन में उठाएगी, जिस पर हंगामे के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के एमएस व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान कर जाँच करवाने और मरीजों को आवश्यक उपचार देने के लिए भी कहा गया है। प्रदीप कुमार ने कहा कि बाहरी राज्यों से अपने घर हिमाचल

0: आने वाले लोगों के सैंपल लेने के लिए भी स्वास्थ्य संस्थानों को कहा गया है। इसके अलावा आइसोलेशन, संक्रमण नियंत्रण और आवश्यक दवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक पवित्र मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस दौरान यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। आधिकारिक तौर पर पवित्र मणिमहेश यात्रा 4 सितम्बर से शुरू होगी और 19 सितम्बर तक चलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार नजदीक आते ही प्रदेश के बाजारों में चहलकदमी बढ़नी शुरू हो गई है और रंग बिरंगी राखियों की मांग भी बढ़ने लगी है। इस त्यौहार को लेकर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और विशेष स्कूलों के बच्चे भी राखियां तैयार कर रहे हैं। इस कार्य में नाहन शहर का आस्था स्पेशल स्कूल भी पीछे नहीं है और यहाँ दिव्यांग बच्चे अपने हुनर को राखियों के माध्यम से बाजार में उतार रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: आस्था स्पेशल स्कूल नाहन के ये विशेष बच्चे पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के लिए राखियां तैयार करते आ रहे हैं। इन बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली राखियों की बाजार में खूब डिमांड रहती है। इस पहल के पीछे का मुख्य मकसद इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है। वहीं बच्चों में राखियां बनाने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राखियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जहां लोग इन बच्चों के हाथों से बनी राखियां खरीद पा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: चंबा जिला में लोगों को स्वास्थ्य वर्धक खाद्य वस्तुओं उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक करण ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से अब तक विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करीब 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में LPG की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को समय अनुसार इसकी आपूर्ति की जा रही है। करण ने कहा कि इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान भी भरमौर और चंबा में श्रद्धालुओं को LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी।
2: जनवरी 2026 से 31 जुलाई तक जो हमने इंस्पेक्शंस किए हैं डिफरेंट रूल्स के अंडर, उसके अंडर हमने लगभग 1,00,000 के करीब जो पेनल्टीज है वो रिकवर की है। जो स्पेसिफिकेशंस है उसके अनुरूप नहीं पाया गया है, तो एज पर रूल्स उस पर भी एक्शन लिया गया है। उपायुक्त महोदय ने ये निर्देश दिया है कि आगामी जो मणिमहेश यात्रा है उसके लिए LPG का भंडार सुनिश्चित करे भरमौर में भी और यहाँ चंबा में भी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। साफ मौसम के चलते भूस्खलन प्रभावित सड़कों को खोलने के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश की 125 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध है। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के दौरान बारिश व अन्य भूस्खलन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 230 लोगों की हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमीरपुर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले की सभी अदालतों में ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत केस का निपटारा करने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए करे प्रोत्साहित। दैनिक भास्कर के शब्द है, शिमला मनाली से आगे बढ़ेगा प्रदेश का पर्यटन, नए ठिकानों तक पहुंचेंगे सैलानी। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, हिमाचल विधानसभा में आज फिर सरकार को घेरेगी भाजपा। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में अभी भी 125 सड़कों पर यातायात ठप। दैनिक जागरण लिखता है, वर्षा भूस्खलन ने सताया, मंडी में सुरक्षा दीवार ढहने से NH का 20 मीटर हिस्सा धंसा। अमर उजाला का शीर्षक है, पाउंटा में

0: खड्ड में ना रहे दो बच्चों की डूबने से गई जान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों व युवाओं से करेंगे संवाद, धर्मशाला में भी कार्यक्रम। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तीसरी बैठक आज, दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र में कई मुद्दों पर तप सकता है सदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रदेश के बाजारों में बढ़ने लगी रौनक, विशेष बच्चों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई राखियां बनने लगी आकर्षण का केंद्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गीतांजलि प्रोग्राम में। हमारा आज का गीतांजलि प्रोग्राम है आप सभी की ईमेल पर बेस्ड, और आप इस प्रोग्राम में अपनी मेल भेज सकते हैं हमें musicmaildishala@gmail.com पर, और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से सिलसिला शुरू करते हैं आप सभी की भेजी हुई मेल्स को शामिल करने का। अगली मेल जो हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। मेल करने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय सिंह ठाकुर, शुभ चंद्र बजाज कालका से और बिट्टू बजाज। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है, मेल किया है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। ये लिखकर भेज रहे हैं अपनी पसंद से कोई सा भी गीत लिख दीजिए, और साथ ही हमें नमस्कार लिखकर भेजा है तो हमारी ओर से भी आपको नमस्कार। मजनू का टीला से ये मेल हमें मिला है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक की। और इसके साथ ही पलारी छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और इनके साथ, और जो नाम हमें दिखाई दे रहा है वो है पूना नाम राम देवांगन और कृष्णा देवांगर का। किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर दीजिए। ये लिखकर भेजा है हमें अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, इनके साथ ही है लदावती जिला मुरादाबाद से ये हमें मेल कर रहे हैं। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से, और मेल करने वाले हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। जलालाबाद वेस्ट से हमें मेल किया है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, देवांशी और निमित आहूजा ने। आरजी जी को सप्रेम नमस्कार ये हमें लिखकर भेज रहे हैं माँ बलवेश्वर धाम से, और ये मेल हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, और मेल करने वाले हैं नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू और इनके साथ ही है देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। प्रोग्राम में एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं जो हमें मिली है जिला मोहाबाबुलंद खंड यूपी से। मेल करने वाले हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघेंद्र अरविंद और इनके साथ ही है रागिनी रिया, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक, और ये भी यही लिखकर भेज रहे हैं कि प्लीज किसी भी गीत में हमारा नाम आप शामिल कर दीजिए। तो चलिए आप सभी के लिए हम प्ले करते हैं ये गीत, आप दिल से यूं ही बने

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: ट्यूनिंग है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जिस वक्त पर आप इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि।

चलिए लिसनर्स, प्रोग्राम में अगली मेल हम शामिल करते हैं जो कि हमें मिली है कटरा चांद खान मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से, और ये हमें मेल कर रहे हैं बरेली शहर से। मेल करने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य की। अगली मेल प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरव चंद्र कला और इनके साथ ही है काशीराथ, गणेश, संगीता आरोही और प्रियांशु की। ये सभी सुनना चाहते हैं दलजीत दोसांझ की आवाज़ में कोई सा भी गीत।

कृपया किसी भी गीत में जो है वो हमारा नाम शामिल कर दीजिए, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इनके साथ ही है पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अगली मेल हमें मिली है कस्बा उधेती से, मेल करने वाले हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार और इनके साथी है प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भया गुप्ता। अगली मेल प्रोग्राम में हम शामिल कर रही हैं जो कि हमें मिली है बरेली मध्य प्रदेश से, हुकुम कमरकर और इनके साथी है सुनीता हार्दिक और प्राची और तनु। इसके अलावा अगली मेल जो हमें मिली है वो हमें मेल कर रहे हैं महाराज कीर्तनपुर गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की। अगली मेल हमें मिली है आलूटा जिला रतनमाल मध्य प्रदेश से और मेल करने वाले हैं जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़ और इनके साथ ही है युवराज सिंह धाकड़ और शिवानी धाकड़। तो आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं प्रोग्राम में ये गीत।

जी हाँ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि। और प्रोग्राम में आपकी मेल्स जो हमें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, और नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र सिंह डूडी हमें मेल कर रहे हैं, ये सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत इसके साथ ही। भाटापारा से हमें मेल किया है के आर साहू, आकाश, कमलेश, गुन्नू लाल राजक और इनके साथ ही है मुरली क्षेत्रीय। इसके अलावा एक और मेल हमें जो शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो हमें मिली है जय जितेंद्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई। और अगली मेल हमें मिली है बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार की।

जी हाँ, हमारी पसंद से ही कोई सभी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है, और ये मेल करने वाले हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, और मेल किया है नंद किशोर, इनके साथ ही है संगीता घंटे, साक्षी घंटे, जयश्री और अंजलि। इसके अलावा एक और मेल जो हमें दिखाई दे रही है वो हमें मिली है बाजार रोड मुंगीसार से, और मेल करने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, और इनके साथ ही है कमरून निशा। और नेक्स्ट मेल जो हमें मिली है वो है मरहरा दरवाज़ा एटा से, और मेल करने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी। नेक्स्ट जो मेल हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू की। अगली मेल हमें मिली है, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नमस्कार जी, मेल किया है मुंगी पैंठण महाराष्ट्र से बाबा साहब कंगणकर, और इनके साथ ही है परमेश्वर रोहिणी और

0: उनका पूरा परिवार। तनुवेड्स मनु फिल्म से कोई सभी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। मेल करने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। इसके साथ ही छतरपुर से हमें मेल किया है बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश और इनके साथ है रविंद्र। कोई सभी गीत सुनवा दीजिए, ये लिखकर भेज रहे हैं बरेली कैंट उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार, रागिनी और मुस्कान। छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे ने। अगली मेल हमें मिली है राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह और इनके साथ ही है इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं दादरी गेट भिवानी से। मेल किया है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। तो चलिए आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं तनुविड्स मनु फिल्म से ये गीत, और पहले आपको सुनवाएंगे संदेश, उसके बाद आपके लिए प्ले करेंगे अगला गाना।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

जी हाँ, एक और मेल हमें मिली है इसी गीत के लिए। बस स्टैंड मनसा पंजाब से मेल करने वाले हैं जगदीश राय गर्ग, अंजलि रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग। और एक और जो मेल मुझे दिखाई दे रही है उसे भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और ये हमें मिली है महाराष्ट्र से, मेल करने वाले हैं हेमंत कुमार, श्रीमती प्रिया, मास्टर ओमी भारशंकर, इसके साथ ही है कुमारी समीक्षा भारशंकर।

जी हाँ, प्रोग्राम के आखिर में हम जिन लिसनर्स की जो है वो मेल शामिल कर रहे हैं वो है बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, इनके साथ ही है डीके हिटलर। और अगली मेल हमें मिली है, ये हमें मेल कर रहे हैं दिल्ली से, और उत्तम नगर दिल्ली से मेल किया है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है संभलपुर कांकर से, मेल करने वाले हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इसके साथ ही भाटापारा से हमें, छत्तीसगढ़ से मेल किया है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, नौखेलाल वर्मा ने, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मीणा और इनके साथ ही है अलका। कनेर से हमें मेल किया है, और मेल कनेर मोहल्ला पटियाला से हमें मेल किया है मुकेश भाटा ने। अगली मेल हमें मिली है बुलथाना से, मेल करने वाले हैं नारायण और इनके साथी है कमल, दिव्या और जयप्रकाश। इसके अलावा एक और मेल जो मुझे दिखाई दे रही है वो है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां की, ये हमें मेल कर रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। और प्रोग्राम में जो अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, मेल करने वाले हैं मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से, और इन सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं ये गीत।

जी हाँ लिसनर्स, इसी गीत के साथ आज का हमारा ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि अब यहीं पर संपन्न होता है। और देखिए ना लिसनर्स, हमारी पूरी पूरी कोशिश रही कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स के नाम इस प्रोग्राम में शामिल कर पाए, और फिलहाल अपनी दोस्त नीमा शर्मा को इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गीतों का कारवां कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं, हाजिर हूं मैं मीनाक्षी शर्मा लेकर गीतों का कारवां। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म मेरे सनम के इस खूबसूरत से गीत के साथ। गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म जीने की राह का ये गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोता, फिल्म संगीत यानी कि गीतों का कारवा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म जुर्म का आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। बोल इंदिवर का है और संगीत राजेश रोशन ने दिया है।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

पाए बहार आई का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, गीतों के कारवां का ये आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। शब्द रचना अनजान की और सुर दिए हैं कल्याण जी, आनंद जी।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं भुवनेश कुमार के इस गाय लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज तीसरी बैठक है। एक दिन के अवकाश के बाद सत्र की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। शुरुआती 2 दिनों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला था। आज भी सदन में

0: हंगामे के आसार है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों, बेरोजगारी, आपदा से नुकसान, सड़कों की बदहाली और जनहित के अन्य मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें विधायक कई अहम मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होगी। मानसून सत्र की कार्यवाही 2 दिन काफी हंगामेदार रही है। सदन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई थी, लेकिन भाजपा विधायकों द्वारा वंदे मातरम गाने की मांग को लेकर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही 2 दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज भी विपक्षी भाजपा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का मुद्दा सदन में उठाएगी, जिस पर हंगामे के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू के फैलने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के एमएस व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान कर जाँच करवाने और मरीजों को आवश्यक उपचार देने के लिए भी कहा गया है। प्रदीप कुमार ने कहा कि बाहरी राज्यों से अपने घर हिमाचल आने वाले लोगों के सैंपल लेने के लिए भी स्वास्थ्य संस्थानों को कहा गया है। इसके अलावा आइसोलेशन, संक्रमण नियंत्रण और आवश्यक दवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि वर्तमान में फैल रहा स्वाइन फ्लू वायरस कोई नया वेरिएंट नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यदि किसी को खांसी, बुखार, जुकाम व सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वे स्वास्थ्य जाँच जरूर करवाएं। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक पवित्र मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रे पासवाल ने बताया कि ये निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस दौरान यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। आधिकारिक तौर पर पवित्र मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर तक चलेगी। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार नजदीक आते ही प्रदेश के बाजारों में चहलकदमी बढ़नी शुरू हो गई है और रंग बिरंगी राखियों की मांग भी बढ़ने लगी है। इस त्योहार को लेकर विभिन्न स्वयंसेवी संस्था समूहों और विशेष स्कूलों के बच्चे भी राखियां तैयार कर रहे हैं। इस कार्य में नाहन शहर का आस्था स्पेशल स्कूल भी पीछे नहीं है और यहाँ दिव्यांग बच्चे अपने हुनर को राखियों के माध्यम से बाजार में उतार रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: आस्था स्पेशल स्कूल नाहन के ये विशेष बच्चे पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के लिए राखियां तैयार करते आ रहे हैं। इन बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली राखियों की बाजार में खूब डिमांड रहती है। इस पहल के पीछे का मुख्य मकसद इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है। वहीं बच्चों में राखियां बनाने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राखियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जहां लोग इन बच्चों के हाथों से बनी राखियां खरीद पा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: चंबा जिला में लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तुओं उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक कर्ण ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से अब तक विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में LPG की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को समय के अनुसार इसकी आपूर्ति भी की जा रही है। कर्ण ने कहा कि इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर और चंबा में श्रद्धालुओं को LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। साफ मौसम के चलते भूस्खलन प्रभावित सड़कों को खोलने के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: दस लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: क्या हुआ अबू?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: कोई डर खौफ ना करें अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे, उन्हें कोई पैसे ना भेजे बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। श्रोतव, महक कार्यक्रम पंजाब दी लेकर हाजिर नाम है तुहाडी दोस्त एंड होस्ट मीनाक्षी। ते कार्यक्रम की शुरुआत असी कर रहे हैं सुरजीत बिंदरखिया दे गाए इस गीत दे नाल।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत तुहानू सुनवा रहे ने गुरदास मान की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम महक पंजाब दी तुसे सुन रहे अपनी रेडियो दोस्त मीनाक्षी दे नाल एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी ते धर्मशाला स्टूडियो तो ते कार्यक्रम दा अगला गीत तुहानू सुनवांदे ने इस विज्ञापन तो बाद।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मां ने प्यार दूं दर्शांदा एक गीत कुलदीप मानक दी आवाज विच सुनदे ने।

0: कार्यक्रम दा आखरी गीत तुहानू सुनवा रहे ने सावरकोटी दी आवाज विच।
1: Excuse me, never seen you before.
2: The guy when I

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाबी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओ, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
0: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
0: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओ, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
0: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्ड

0: को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
6: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या,

0: हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
1: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट।

0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
4: ग्रेट, मार्वेलस।
6: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
4: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
2: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे

नितेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं हम कार्यक्रम सैनिकों के लिए। जी हाँ, आपके मनोरंजन के लिए हम सुनवाने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत से।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कारवा फिल्म से। इस गीत में आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं इस वक्त सैनिकों के लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में पराया धन फिल्म से ये गीत। इस फिल्म में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

जहाँ देवदारों की छांव में लोकगीत गूंजते हैं, जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर आस्था के दीप चलते हैं, जहाँ हर घाटी की अपनी बोली, अपना पहनावा और अपनी परंपरा है, वही है हमारा हिमाचल। प्रकृति की गोद में बसा, आस्था से सजा, देवी देवताओं की पावन भूमि हिमाचल। नमस्कार सखियों, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ अपनी सभी श्रोता सखियों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी के आज के इस खास अंक में, यानी कि हिमाचली संस्कृति में। आज हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की भूमि हिमाचल पर। सखियों, हिमाचल प्रदेश केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, कलकल बहती नदियों और हरे भरे जंगलों का प्रदेश नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि हिमाचल की धरती का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां किसी देवी देवता की अपनी मान्यता, अपनी कहानी और अपनी परंपरा ना हो। यहाँ देवता केवल मंदिरों में विराजमान नहीं होते, बल्कि वे लोगों के विश्वास में रहते हैं। लोग गीतों में गूंजते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर निकलते हैं और मेलों त्योहारों में पूरे गांव को एक सूत्र में बांध देते हैं। हिमाचल की देव संस्कृति सदियों पुरानी लोक परंपराओं का जीवंत रूप है। कुल्लू की घाटियों से लेकर किन्नौर की पहाड़ियों तक, चंबा से लेकर कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला तक, हर क्षेत्र की अपनी देव परंपरा है। यहाँ किसी गांव के देवता को लोग अपना रक्षक मानते हैं, तो किसी देवी को समृद्धि और खुशहाली की प्रतीक माना जाता है। सखियों, अगर हमारी हिमाचली संस्कृति को समझना हो तो यहाँ के देवालयों और देव परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है। कुल्लू घाटी की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा देव संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत करता है। दशहरे के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से देवी देवताओं की शोभा यात्राएं निकलती हैं और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरी घाटी भक्ति में हो उठती है। ये केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और सामुदायिक एकता का अद्भुत संगम है। और जब देवरथ या देवी देवताओं की पालकियां सामने आती हैं, तो लोग श्रद्धा से उनके आगे सिर झुकाते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे लोग, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और पहाड़ों के बीच गूंजता लोक संगीत, मानो पूरा हिमाचल अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ सामने आ खड़ा होता है। तो सखियो, आज का विषय बेहद खास और बहुत कुछ इस बारे में कहने के लिए है, लेकिन बातों के साथ साथ हमारी सखियों का मनोरंजन भी बेहद जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम करवाते हैं अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें

0: तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गीत और विज्ञापनों के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में, जहां आज हम बात कर रहे हैं हमारी हिमाचली संस्कृति, देवी देवताओं की भूमि हिमाचल पर। हिमाचल की देव संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ के लोक मेले और त्यौहार। लोहड़ी हो, माघी हो, शिवरात्रि हो, फागली हो, फुलैच हो, या फिर स्थानीय देव मेलों की परंपरा, हर उत्सव के पीछे प्रकृति, कृषि, ऋतु और आस्था का गहरा संबंध दिखाई देता है। मंडी को तो शिवरात्रि के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहता, बल्कि देव संस्कृति का विशाल उत्सव बन जाता है। दूर दूर से देवी देवताओं की पालकियाँ आती हैं, श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। लेकिन सखियों, हिमाचली संस्कृति सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस संस्कृति की सुंदरता यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा और आभूषणों में भी दिखाई देती है। जब हिमाचली महिला पारंपरिक पोशाक पहनती है, सिर पर सुंदर ढाटू सजाती है और पारंपरिक आभूषण धारण करती है, तो उसकी सादगी में भी हिमाचल की पूरी सांस्कृतिक छवि दिखाई देती है। पुरुषों की पारंपरिक टोपी, चोला और स्थानीय पहनावा भी हिमाचली पहचान का अभिन्न हिस्सा है और हिमाचली टोपी तो प्रदेश की पहचान बन चुकी है। हिमाचल की संस्कृति की एक खास खूबसूरती है कि यहाँ आत्सा और लोक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांव में कोई शुभ कार्य हो, नई फसल आए, विवाह हो या कोई पारंपरिक उत्सव, देवताओं का स्मरण किया जाता है। कई स्थानों पर देव परंपराओं से जुड़े विशेष नियम और रीति रिवाज आज भी निभाए जाते हैं। ये परंपराएं हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और यही तो संस्कृति की खूबसूरती है। हिमाचल की देव संस्कृति हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, एकता का। देव मेले हों या त्यौहार, गांव का हर व्यक्ति मिलकर आयोजन करता है। सखियों, आज हमने महसूस किया हिमाचल की उस आत्मा को जो मंदिरों की घंटियों में है, ढोल की थाप में है, लोकगीतों की मिठास में है, नाटी के कदमों में है और यहाँ के सरल सहज लोगों के दिलों में है। सखियों, हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की पावन भूमि कहलाता है। यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ और हर नदी अपनी आस्था और आध्यात्मिकता की कहानी कहती है। मंदिरों की घंटियों और लोक देवताओं की गूंज से हिमाचल की धरती सदैव भक्तिमय रहती है, इसीलिए हिमाचल को प्यार से देव भूमि कहा जाता है। तो बातें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और करवाएंगे अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले।

0: आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: गीत और विज्ञापनों के बाद फिर से हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी कार्यक्रम सुनो सखी में, जहाँ हमने बात की हिमाचली संस्कृति पर आधारित देवी देवताओं की भूमि हिमाचल पर। और अब समय हो गया रसोई घर में रुक करने का, जहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ नेपाली स्टाइल आलू चटनी, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 10 से 12 मध्यम आकार के आलूओं को काटकर उबाल लिया है और करीब 3 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं और उन्हें कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है और 2 लाल मिर्च भी भून ली हैं। अब तिल को ठंडा होने देंगे और थोड़ा सा तिल साबुत रख लेंगे, बाकी मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी भी भून लेंगे। उसके बाद उबले हुए आलू और बारीक कटे हुए जो कि टुकड़ों में हमने काट रखे थे उन्हें डाल देंगे, गैस बंद कर देंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आमचूर 1 चम्मच, 1 नींबू का रस और साथ ही डालेंगे बचे हुए सफ़ेद तिल। अच्छे से सबको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद सखियो हमारी ये स्वादिष्ट नेपाली चटनी जो है आलू की बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाएँ, खुद भी खाएँ और परिवार में भी सबको खिलाएं। और खान पान के बाद अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सदस्यता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा।

ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता, एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ हेमंत कुमार की, कैफी आज़मी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए, अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आँखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो। तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण की चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, कभी कभी जवाब दे भी पाता हूँ। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं। ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते थे, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं, आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसारा अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5-6-10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फ़िलहाल बादलों का कब्ज़ा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है और किस सवाल पर चुप रहना ज़रूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज़, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फ़ोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती है, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब

जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल।

इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है, ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है, इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम में इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज़ दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।

भारतीय संस्कृति में पायल की रुझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झनकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।

मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुंझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।

एवं सौम्य रूप में व्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: वी हैव अबाउट 80 कंपनीज।
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
7: PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू

0: कर कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुस जलडमर मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुस जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुस जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर

के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदगी।

0: नाचे ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे
1: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है ज़िद्दी।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली ख़ान, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो

0: बारे खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने। धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामायिक चर्चा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन में बैठक शुरू होते ही वंदे मातरम को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही न चलने के आरोप लगाए। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला और विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे और नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पांव तक डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता सरकार पर 3 अटैची दिल्ली भेजने और 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में रखने के आरोप लगा रहे हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों से प्रदेश का विकास ठप है और भाजपा सदन चलाना और जनता के मुद्दे उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पर राष्ट्रीय गान के अपमान के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष देश में महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है। सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों का सम्मान करती है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ई मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई मार्ट सुविधा हिमाचल में नई शुरुआत है और प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ई मार्ट मददगार बन रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ई मार्ट के माध्यम से प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से अपने उत्पाद बेचने का मंच प्रदान किया जा रहा है।
2: ई मार्ट एक नई शुरुआत है हिमाचल के अंदर। प्रदेश में हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक अच्छा प्रयास इसके माध्यम से करवाया जा रहा है। इसमें हमारी जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे प्रदेश के अंदर है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट्स को केवल हिमाचल में नहीं मगर पूरे देश के अंदर जो है वो बेच सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट है या हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, उनको पैकेजिंग सही रूप से करके को इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में देश में मार्केटिंग करने का प्रयास किया जाएगा।
1: भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से होगी। बिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक व कार्यशाला में इस व्यापक अभियान का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ रक्तदान शिविरों के साथ किया जाएगा। इसके साथ सेवा ज्योति यात्रा और विभिन्न सामाजिक व जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेवा को शासन का मूल मंत्र माना गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में भी व्यापक कार्यक्रम

0: आयोजित किए जाएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान मनाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाते सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस से मतदान शिविरों से प्रारंभ होने वाला ये अभियान सेवा ज्योति यात्रा होगी। प्रदेश में भी 31 सितंबर को एक मैराथन बैठक शिमला में होगी, जिसमें इन सभी कार्यक्रमों का निर्णय करके उनको जमीन पर उतारा जाएगा।
0: सोलन जिले में डेंगू रोग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और सभी अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिला के परवाणु क्षेत्र में डेंगू संक्रमण का एक मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित आशा कार्यकर्ताओं को लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद परवाणु को फॉगिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि समय रहते इस बीमारी को रोका जा सके।
2: डेंगू का एक मामला परवाणु से आया है हमारे जिले में। पहले से ही विभाग सतर्क है, हम लोग आईसी घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। आशा वर्कर्स के थ्रू, हेल्थ वर्कर्स के थ्रू जागरूक इस बात के लिए कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटीज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमने एडवाइजरी, अगर मच्छर ज्यादा बढ़ते हैं तो फॉगिंग की जाए।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: ये थे प्रादेशिक समाचार। अब पेश है सामायिक चर्चा। विषय है सुदृढ़ भारत के लिए खेती प्रणालियों का पुनर्निर्माण। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
4: भारत की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने ठोस व निरंतर प्रगति अर्जित की है। वित्त वर्ष 2016 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसने 4.45% की दशकीय वृद्धि दर्ज की। ये वृद्धि दर पिछले दशकों में सबसे अधिक थी। ये उपलब्धि इस क्षेत्र की मजबूती और देशभर के किसानों के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। फिर भी इस गति को बनाए रखने के लिए उन पर्यावरणीय आधारों को मजबूत करना जरूरी है जो दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता को सहारा प्रदान करते हैं। हर मौसम में किसान नई उम्मीद और बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ अपने खेतों में लौटते हैं। वर्षों की सघन खेती, रसायनों के अत्यधिक उपयोग और अनियमित बारिश के कारण कई प्रकार की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट जाती है और वे कम असरदार रह जाती है। जो उपज पहले आसानी से मिल जाती थी, उसके लिए अब अधिक इनपुट की जरूरत होती है। वहीं लू, सूखे के दौर या अत्यधिक बारिश के महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकती है। लाखों छोटे व सीमांत किसानों के लिए मिट्टी की गिरती सेहत का मतलब अक्सर उच्च लागत और अनिश्चित फसल होता है। नतीजतन खेती की स्थिरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है। यही आकर पुनर्योजी कृषि प्रासंगिक बन जाती है। मिट्टी की जीवन शक्ति को फिर से बढ़ाकर, इकोसिस्टम के कामकाज को सुदृढ़ करके और जलवायु परिवर्तनशीलता की सामना करने की क्षमता में सुधार करके ये मिट्टी और उत्पादकता दोनों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पद्धति भारत की कृषि के आधार को पुनर्जीवित करने का रास्ता दिखाती है, साथ ही पर्यावरण के दीर्घकालिक संतुलन बनाए रखने और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने में भी सहायता करती है। पुनर्योजी कृषि खेती का एक ऐसा समग्र तरीका है जो मृदा की सेहत को बेहतर बनाने और जैव विविधता को बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही इसका उद्देश्य खेती की पद्धति में दीर्घकालिक उत्पादकता एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित करना है। स्वस्थ मृदा से अपेक्षाकृत अधिक भोजन और पोषण मिलता है, अधिक कार्बन का भंडारण होता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। मौजूदा स्थितियों को बनाए रखने को अपना मुख्य उद्देश्य मानने वाली सतत कृषि के उलट पुनर्योजी कृषि का उद्देश्य स्थितियों को बेहतर बनाना होता है। मृदा की सेहत को सक्रिय रूप से बेहतर बनाकर, जैव विविधता को बढ़ाकर और इकोसिस्टम की सुदृढ़ता को मजबूत करके ये पद्धति एक कदम और आगे जाती है। पुनर्योजी कृषि भारत में अपनाई जाने वाली खेती की विविध पद्धतियों पर आधारित है। भले ही पुनर्योजी तरीकों का दायरा बहुत बड़ा है, फिर भी कुछ प्रमुख तरीकों को मोटे तौर पर इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ड्रिपर, स्प्रिंकलर और फॉगर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और पानी के उपयोग की क्षमता बेहतर होती है। खेत के स्तर पर जल प्रबंधन को बेहतर बनाकर ये प्रणालियां फसल की

0: पैदावार बढ़ाती हैं और सूखे व पानी की कमी से निपटने की क्षमता को मजबूत करती हैं। परिणाम स्वरूप खेती की प्रणालियां जलवायु की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बन जाती हैं। खेती के मशीनीकरण के तहत खेतीबाड़ी के विभिन्न कार्यों को आसान व स्वचालित बनाने के लिए खेती की मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये पानी, ईंधन और उर्वरक जैसी जरूरी साधनों के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। खेतीबाड़ी के कार्यों को समय पर और सही ढंग से करने में मदद करके मशीनीकरण साधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और खेती में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने में मदद करता है। नाइट्रोजन उर्वरक प्रबंधन नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ये सही उर्वरक को चुनने और उससे उपयोग के उपयुक्त समय व मात्रा को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य तरीकों में अत्यधिक दानेदार यूरिया को गहराई में डालना और नाइट्रोजन की स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए पत्तियों के रंग वाले चार्ट का उपयोग करना शामिल है। यह तरीका साइनोबैक्टीरिया और लेग्यूम इंटरक्रॉपिंग जैसे जैविक इनपुट को भी बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर ये उपाय नाइट्रोजन के उपयोग संबंधी दक्षता को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: चर्चा विषय था सुदृढ़ भारत के लिए खेती प्रणालियों का पुनर्निर्माण। आकाशवाणी का
2: FMN 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं, रिमझिम बारिश अच्छी लगती है और उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है हमारे कार्यक्रम में, देख लो, या हमारे इस स्टूडियो में, है ना। तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी 6 आने का टिकट, इसका पहला भाग। आइए सुनते हैं।
4: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
5: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी 6 आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
6: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर

0: रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
1: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
0: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं।
1: ओहो, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा एक हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं?
0: जी।
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहाँ जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?

0: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
1: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, चार दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
0: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
1: जी?
0: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
0: किशोर जी।
1: हाँ बोलिए।
0: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
1: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
0: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
1: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
0: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
1: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
0: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
1: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
1: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी।
1: जी,
0: आज तो आपकी छुट्टी है।
1: हाँ,
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
1: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
0: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा।

लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी,

अभी आप सुन रहे थे कहानी छः आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उभरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए, और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको, उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय

0: तरह की ना नुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें, आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए ज़रूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में, तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरें और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
1: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी मजबूती बन जाती है। हाँ। और जब भी लगे कि मुश्किल ज़्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज़ आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
0: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को, मुश्किल
1: और बड़ा
0: को
1: बना लेते
0: बहुत
1: हैं,
0: बड़ा बना देते
1: और
0: हैं।
1: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
0: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सज़ा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की ज़रूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा। और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
0: और
1: है।
0: और कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल
0: है,
1: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं है, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने की बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, हर मुश्किल के बाद 2 चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियाँ अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है। निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
0: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं जो सफल व्यक्ति हैं,
1: बिल्कुल महान उन्होंने व्यक्ति जो हुए हैं,
0: उनके उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
0: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना। तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
0: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
1: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें। सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शैलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं। बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
0: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं। और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे कहने श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये
0: हाँ
1: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है
1: जरा
0: कभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वही बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
1: क्या
2: ये माध्यम से,
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के ज़माने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें, ये चीज़ें डाल दो, ये कितना ख़तरनाक लग रहा है। यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं।
2: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
2: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ सकते
1: हैं।
2: यस
1: जी जी,
2: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं।

0: इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटाई एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
0: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के,
0: बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
1: जी,
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
1: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
0: yes, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहाँ जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
0: बिल्कुल
1: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए
1: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
0: हाँ।
1: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: 40-50
1: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे है।
0: और पुरुषों में,
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं। और जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है।
0: जी,
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं।
0: ये जो आपने टर्म यूज की, हाँ, ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है।
0: ब्लू कलर की रोशनी में?
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें। तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं।

0: उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है. दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं. और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू. सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं.
1: बिल्कुल.
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है. तो वो आहिस्ता जो आना है, वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है.
1: जी बिल्कुल.
0: जितना शेडिंग फास्ट, उतना जल्दी गंजापन.
1: ये समझने की बात
0: है. तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है. और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इम्पॉर्टेंट है.
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट. तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के.
0: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट.
1: ओके.
0: एक डिग्री नहीं है.
1: जी जी.
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं.
1: ओके.
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ. लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है. तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर. यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं.
1: जी जी जी. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीज़ें, बाल्डनेस कॉमन चीज़ें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होते हैं। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 ईयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के ज़माने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
0: बढ़िया
1: तो
0: बात,
1: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस

0: होके उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं,
0: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था। अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
1: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते
1: हाँ
0: हैं और वो तरह तरह की चीज़ों, दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीज़ें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहाँ हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला

0: जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके,
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके,
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है जब, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको ज़रूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
0: इस उम्र में तो सबका होता है, हमारा भी हुआ था।
1: बिल्कुल, यही डायलॉग होता है।
0: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए। महिलाओं में 30 से 40 बाल,
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
1: मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज़्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
0: उल्टा हो जाएगा।
1: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनके इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो वजह से भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी है और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स क्या लगेगा?
1: यस, सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
0: जी,
1: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
0: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
1: yes.
0: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से पान

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन हैं, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओ हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओहो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल,
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय

0: पर सावधान हो जाइए।
1: यस, बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: यस,
0: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो ये
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए,
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब

0: आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं, जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
1: और यहां तो दिन
0: उल्टा हो
1: भर का
0: जाता
1: खाना
0: है।
1: रात को हो रहा है।
0: हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस बिल्कुल।
0: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा?
1: बिल्कुल
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे, 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है, 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है,
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: यस, स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी. और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है. ना इवन पैसिव स्मोकिंग. कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं. तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर.
0: बिल्कुल. अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे. ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है. ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी.
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं. अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे. एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है. क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है.
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है. एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है.
0: तो ये समझने की जरूरत है.
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है.
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: यस,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

श्रोताओं, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग।

0: द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉ. जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh

0: विषय बनी
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। और युवा साथियों, आज आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम युवा मंच। और युवा मंच कार्यक्रम में आज रह गए करंट अफेयर्स अपडेट। और आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम,
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त संगीता।
0: और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसमें राजनीति, खेल, विज्ञान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ताज़ा खबरों पर हम डालेंगे एक खास नज़र। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको सरल और रोचक अंदाज में हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि आप रहें हर समय अपडेट।
1: जी हाँ दोस्तों, और साथ ही देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों पर भी नज़र डालेंगे, और साथ में आपके मूड को फ्रेश करने के लिए बेहतरीन गाने भी सुनेंगे।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम लेकर आ रहे हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें।

0: तो युवा साथियों, इस दिल को छू लेने वाले गीत के बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स में। भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी डिजाइन वाला माहे क्लास ASW-SWC INS माहे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया और इसका नाम मलाबार तट के ऐतिहासिक माहे शहर पर रखा गया है। और जहाज का क्रेस्ट क्लाइरी पट्टू की उर्मी तलवार और लहरों के साथ है, जबकि चीता इसकी तेजी और फोकस को भी दर्शाता है। ये 8 जहाजों की श्रृंखला में पहला है।
1: और दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त झाड़ीनुमा प्रजाति की, जिसका नाम है
0: यूफोर्बिया अनंतपुरमेनिसिस।
1: हाँ, ये है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की एक स्थानीय और अत्यंत दुर्लभ संकटग्रस्त झाड़ीनुमा प्रजाति। हाल ही में खोजी गई ये प्रजाति केवल एक ही स्थान पर 2.5 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में लगभग 80 पौधों की आबादी तक सीमित है। और ये झाड़ीनुमा एक पौधा है जो कि ग्रेनाइट चट्टानी इलाकों में उगता है।
0: और युवा साथियों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में पौधों की 2 और नई प्रजातियों की भी खोज की है, जिसमें यूफोर्बिया कैलेमेंसिस एक छोटा वार्षिक शाकीय पौधा है, जिसकी खोज गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभयारण्य के चालामा वन में भी की गई थी। और यूफोर्बिया की दोनों प्रजातियों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं
1: और इसका उपयोग आदिवासियों द्वारा घाव, त्वचा के रोग और पाचन संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है।
0: औषधीय गुण जो है वो भी बहुत सारे हैं और साथ में सेरोपीजिया एंड्रिका एक बौना कंद युक्त शाकीय पौधा है, जिसकी खोज अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पदेरू वन प्रभाग में की गई है।
1: और ये पौधा मई और जून के बीच पहली वर्षा के बाद फूलता है और बाद में आलू जैसे खाने योग्य कंद उत्पन्न करता है, यानी खाने में ये आलू जैसा ही होता है और दिखने में भी ये आलू के जैसा ही होता है।
0: जी हाँ युवा साथियों, तो ये थी पौधों की 3 नई प्रजातियों के बारे में जानकारी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

0: युवा साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में। तो छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सफल पायलट परियोजनाओं के बाद भारत सरकार असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में समर्थ पंचायत पोर्टल का विस्तार कर रही है।
1: और ये पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करना और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये पहल लक्षित नीति निर्माण और बेहतर स्थानीय प्रशासन को समर्थन प्रदान करती है।
0: युवा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, भारत ने गुजरात के गांधीनगर में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की और 44 वर्षों में ये पहला अवसर है जब भारत इस प्रतियोगिता का आयोजित कर रहा है। ये टूर्नामेंट 11 मई से 17 मई 2026 तक आयोजित किया गया और इसमें 28 देशों के लगभग 180 एथलीट भाग ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफिकेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है और भारत, चीन और श्रीलंका की टीमें इसमें सबसे बड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक में 16 भारोत्तोलक शामिल हैं।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
1: अगली जानकारी के साथ फिर से हाजिर हैं हम दोनों ही और पूनम, बताइए अगली जानकारी क्या है जो हम अपने युवा साथियों से साझा करने वाले हैं।
0: तो अगली जानकारी जो है वो स्पेस डिस्कवरीज के बारे में है। तो हम बात करेंगे कि मई 2026 में वैज्ञानिकों ने एक नए एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की खोज की जो स्कूल बस के आकार का था और पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से गुजरा
1: और जिसकी चर्चा भी हम सभी देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे।
0: और नासा के साइकी अंतरिक्ष यान ने मई 2026 में मंगल ग्रह की सतह से महज 4,500 किलोमीटर दूर उड़कर एक सफल ग्रेविटी असिस्ट पैंतरा पूरा किया ताकि वह धातु से भरपूर एक दुर्लभ क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड की ओर बढ़ सके।
1: जी हाँ, कितनी अच्छी जानकारी देखिए आज हम साझा कर रहे हैं अपने युवा साथियों के साथ। और अगली जानकारी
0: की अगर बात की जाए तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का स्माइल सैटेलाइट लॉन्च के अंतिम चरण में पहुंचा है और जो ये अध्ययन करेगा कि सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय कवच को कैसे प्रभावित करती हैं। और संगीता, तो अब जो है हमारे युवा साथी जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं एक और प्यारे से गीत का, तो क्यों ना एक गीत सुनवाया जाए।
1: आनंद लेते हैं गीत का।

0: फिर से बहुत बहुत स्वागत है युवा साथियों आपका, और बहुत सारी जानकारियां हमने अलग अलग फील्ड से आपके साथ साझा की हैं। और एक जो फील्ड है जो कि हमें भी और हमारे सभी युवा साथियों को बहुत ही पसंद है, और वो है
1: खेल जगत।
0: हाँ, वो है खेल का, और खेल की भी बहुत सारी खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे और लेकर भी आए हैं बहुत सारी खबरें।
1: जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं क्रिकेट अवार्ड्स के बारे में। और मार्च 2026 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी BCCI ने नई दिल्ली में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी शुभमन गिल, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को भी इस अवार्ड के लिए चुना गया था।
0: और युवा साथियों, राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
1: क्रिकेट के मैदान में इस समय कई बड़ी और दिलचस्प खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, और मुख्य रूप से इस समय IPL 2026 अपने अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो क्रिकेट जगत की कुछ मुख्य सुर्खियां इस प्रकार से हैं।
0: IPL 2026 के लीग मैच अब खत्म होने वाले हैं, और गुजरात टाइटन्स GT ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को 89 रनों से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफायर एक में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। और IPL 2026 के प्ले ऑफ मुकाबले 26 मई से धर्मशाला और पंजाब में

0: होने जा रहे हैं, जबकि इसका फाइनल यानी महान मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: और अपने सभी श्रोताओं को और अपने युवा साथियों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आईपीएल मैच धर्मशाला में 26 मई 2026 को खेला जाएगा और फाइनल मैच जो है वो 31 मई 2026 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो हमारे युवा साथी जो हैं वो इस मैच का आनंद लेना तो बिल्कुल ना भूलें
0: और अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए दुआएं करते रहें। और हम सबकी दुआएं तो आपके साथ ही हैं।
1: हाँ हाँ संगीता, और हम सबकी दुआएं भी सभी टीम्स के साथ हैं कि वो जीतें और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम जो है वो ज़रूर रोशन करें। और संगीता देखो, वक्त का पता ही नहीं चला, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमारा सफ़र जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है।
0: उम्मीद करते हैं कि आपको आज के करंट अफेयर्स और गानों का ये फ्यूजन पसंद आया होगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहिए, खुद को अनुशासित रखिए और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सुरों के साथ।
1: तो चलते चलते आपके लिए छोड़ जाते हैं एक प्यारा सा गीत। युवा साथियों, सुनते रहिए FM धर्मशाला और यूं ही मुस्कुराते रहिए। तो अब अपने सभी दोस्तों को कहते हैं बाय बाय एंड टेक केयर।
0: चलते चलते आपको ये बता दें कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम सुरमई सांझ। छः बजकर 6:30 पर किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात्रि 8:00 समय रहेगा विधानसभा समीक्षा का, जो कि आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीतकार खयाम के संगीतबद्ध किए हुए कुछ फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात्रि 10:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:00 को हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: परंपरा पहले से चली आ रही है। इस दौरान विपक्ष ने सदन के भीतर राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन हुए राष्ट्रगान की फुटेज देने की मांग की, लेकिन फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था में कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।
1: हम चाह रहे हैं सदन चले, लेकिन सदन चलने से पहले जो हमने कमिटमेंट विधानसभा अध्यक्ष मोदी जी ने की है कि हम आपको वो क्लिपिंग जो है वो रिकॉर्ड की वो दे देंगे, लेकिन आज देने से मना कर दिया। अभी तक मैं बाद अब कहा कि मैं बाद में उसको एग्जामिन करूंगा, उसके बाद देखो कितना समय लगेगा। आज चार दिन हो गए उसको एग्जामिन करते करते, उसके बावजूद भी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इसका मतलब है कि जो बोला गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय गान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके, वो झूठ था, वो साबित हो गया, वो सरासर झूठ था। और अध्यक्ष महोदय उनके झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज हम सदन से वॉकआउट करके बाहर।
0: दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है, इसलिए बार बार अवरोध डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को जहां भी कार्यक्रम हुए वहां पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और फिर राष्ट्रगान गाया गया, लेकिन राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है।
2: राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए, उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है।
0: इस बीच आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही ना चलने देने के आरोप लगाए। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला और विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे और नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता सरकार पर 3 अटैची दिल्ली भेजने व 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में रखने के आरोप लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदन चलाना और जनता के मुद्दे उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाग रही है।
3: हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और स्थिति ये बन गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच।
0: वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष देश में महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है। सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो।
2: पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य मुद्दे प्रदेश में इसमें बने हुए हैं इनके खिलाफ, ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शैलेंद्र के लिखे हुए गीत को। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

एक मुसाफिर एक हसीनत फिल्म में लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है HS बिहारी ने और संगीत है OP नैयर का।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अभिलाषा, इस फिल्म में लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: शागिर्द इस फिल्म में लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: किसान साथी अज टैले पर मिंजो सो कि पंच दा पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी, कने कार्यक्रम सुना करदे सारे ही श्रोतियां, जो किसान भाई बहना, जो कने बागवान भाई बहना, जो जिहड़े से पंच दी तरफा ते राम राम। ता जी राम राम हाँ दे होई गई। और हाँ जिहड़े से हुण अपनी गलबात दी तरफ चलदे न, और सब ते पहले अज हाँ गल करनी है प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान दे बारे च। जी तो इस विच जिया कि अहाँ जानते हैं कि साड़ी सरकार, चाहे सह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सह साड़े किसानों वास्ते, साड़े बागवानों वास्ते जिहड़ी से नई नई योजना स्कीम जिहड़ी से लियांदी रहिंदी है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस विच भी जिहड़ी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिहड़ा है किसानों की उपज का उचित मुल्य दिलाने वास्ते और उन्हां दी आय जो संरक्षित करने वास्ते जिहड़ा से ये योजना लाई गई है। और इस योजना के तहत जिहड़े से न्यूनतम समर्थन मूल्य जिहड़ा से साड़ी केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहे से रबी की फसल होए, चाहे खरीफ की होए, दिलहन तिलहन होए या फिर दलहन फसलों की होए, इन सारे ही फसलों की जिहड़ी से न्यूनतम समर्थन मूल्य जिहड़ा से निर्धारित किया जाता, जिससे कि साड़े किसानों जो उन्हां दी उपज का उचित जिहड़ी कीमत है से मिली सके, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस विच गल करिए बड़का चाचू जी, अहाँ दलहन फसलों की, तो इस विच अरहर है, तूर जिस अहाँ बोलते हैं, मूंग है, उड़द है, चना मसर है, या फिर इस दे कने कने तिलहन फसलों जी मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों है, राई है, एक इन कुछ फसलों का जिहड़ा से अहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य साड़ी किसान सरकार जिहड़ी से निर्धारित करती है। और इस दे कने कने साड़े जिहड़े मुख्य अनाज ने, गेहूं है, चावल है, या फिर कने जौ है,
0: जी जी
1: इन रबी कने खरीफ फसलों की भी जिहड़ी से साड़े सरकार मूल्य जिहड़ा निर्धारित करती है। और इस अभियान के तहत जिहड़े से सरकार साड़े कृषि कृषकों की जिहड़ी आय का संरक्षण करने वास्ते जिहड़े से उन्हां दा सब ते पहले तो पंजीकरण किया जाता है ना। तो पंजीकरण करने वास्ते जिहड़े से जल्लू साड़ी फसल तैयार हो जाती है, और फसल जो अहाँ अपने कृषि विक्रय केंद्र च लेके जाते हैं, जियाँ कि साढ़े गल करिए हाँ जिला कांगड़ा दी, तो इतों जिहड़े से अलग अलग स्थानों पर जिहड़े से कृषि विक्रय केंद्र जिहड़े से साड़ी सरकार ने बनाए होंदे ने, कृषि विभाग ने बनाए होंदे, जिस विच नगरोटा बगवां हुई आ, फिर साड़े जिहड़ा देरा है, इस दे कन्ने ज्वाली और इंदौरा क्षेत्र विच जिहड़े से ये फसल विक्री केंद्र जिहड़े से साड़ी कृषि विभाग जिहड़ा से खोलदा, तो उत्थों जाए के साड़े किसान जिहड़े से पंजीकरण उन्हां दिनां च करवाई सकदे, और पंजीकरण करवाने के बाद जिहड़ा से तिन्हां च जिहड़ी फसल है इसका जिहड़ा से बिक्री उन्हां केंद्रां च हुंदी है, और उन्हां जो अच्छा जिहड़ी कीमत है सरकार द्वारा जिहड़ी निर्धारित कीती हुंदी है से मिलदी है, और इस ते उन्हां दी आय जिहड़ी है संरक्षित हुंदी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल कने देखा कि इस च आहा जड़ा किसान साथी के भी अपने खेत खिलाने च खूब जड़ी मेहनत के भी करता है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: अगर जड़ा सरकार है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किते है, अगर उस दे ऊपर अगर जिया साड़ी फसल बिकी जाती है
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: बड़ी
1: जी
0: बांकी गल है,
1: जी
0: अगर नहीं बिकती है तो असा ये जड़ी फसल के भी अपने मतलब जड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किते हुंदे ने, सरकार जो कहने भी इस फसल जो हाँ बेची सकते हैं।
1: बिल्कुल बड़का चाचा जी, तू ठीक ला दे, क्योंकि हाँ सब ते पहले तो असो ऑप्शन ये रही कि साड़ी किसान जड़े से खुले बाजार च जड़ी से अपन फसल जड़ी से उच्ची कीमत पर बेची सकते हैं ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर तिना लगता कि अगर खुले बाजार च भी जड़ी से तिना जो घट कीमत मिला करती है, तो साड़ा किसान जड़ा से सीधे तौर पर अपने कृषि विभाग कने संपर्क करके उत्तू जड़ी से सरकार जो अपनी फसल जड़ी से उचित मूल्य पर बेची सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और दिखा पंच जी कि यहाँ बड़ी बड़ी टियाले के माध्यम कने गलबात करते हैं कि भाई असा दा जड़ा किसान साथी के भाई छोटे स्तर पर भी खेतीबाड़ी जो करता और बड़े स्तर पर भी खेतीबाड़ी जो करता है ना,
1: जी
0: और प्रयास ये रहता है चाहे राज्य सरकार की गल की जाए चाहे केंद्र सरकार की गल की जाए कि असा दा जड़ा किसान साथी के भी कभी भी निराश ना होए,
1: हाँ जी
0: उन्हां दी जड़ी मेहनत है उन्हां दा जड़ा फायदा मेहनत दा जड़ा फायदा के भी असा दे किसान साथी मिले, ता हर तरह की जड़ी योजना कहन भी किसानों के हित ताई सरकार द्वारा बनाई हैं, लेकिन सानू जागरूक रहना पौना योजना के बारे में, सानू पूरी जानकारी होना चाहिए है कि अहाँ इस योजना का लाभ क्या ले सकते हैं।
1: बिल्कुल बड़का चाचू जी, तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे च। हुण हां चलना लोक जानकारी की तरफ और सुनना एक प्यार दे लोक गीत।
0: जी

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां हेतु संपन्न होकरदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा अंकित धीमान, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने टैल दे सबड़का चाचू
1: कन्नै पंच जो दिया अनुमति।

FM बैंड 103.4 MHz पर, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉ

0: में शामिल होंगे। श्री डोवाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Early in the day, External Affairs Minister, along with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov, co-chaired a meeting of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow. Dr. Jaishankar reached Moscow yesterday on a two-day visit to Russia. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a two-day visit to China. He will take part in the 25th round of the special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister Wang Yi, scheduled tomorrow.

0: भारत अभियान की शुरुआत जी से करना चाहिए और हाँ दी पहल करने जड़े से ये अभियान जड़े से साढ़े पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर पर और फिर साढ़े जड़े जिला स्तर पर और पूरे देश जड़े से इस जो अहाँ निभाई सकते हैं तो अहाँ इस बीच जड़ी से सारे दी ही सांझी जड़ी से एक भागीदारी चाहते हैं ता ही जड़े से अपने भारत जो सुंदर जड़ा से बनाई सकते हैं ना।
1: बिल्कुल। ता किसान साथी गल्ला बातां सदियां अग्गे भी जा रहे ने, पूरा हां शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत, ता सुन दे ने लोक गीत।
0: जी।

0: चंबे
1: उतरने चढ़ती बारी अपना माल नहलाना दुलाना ताकि बीमारी जी तेतो ही कंट्रोल हो जा अगे नहीं जा ना। उत्तम जी ये सोगी साले की कितनी बारी जिया माले तो बेचते जिया पशु जी रखे
0: जल
1: जरूरत अपना काम
0: नहीं है
1: साले कट्ठा नहीं
0: है ना साले दो बारी
1: नहीं है। इस वक्त तो दसा दे की दो दिन का रस्ता पैदल जितो तो माल है तेतो इतनी दूर कि खरीदने वाले चली जाते इतनी दूर ये अलावा जिया इन्होंने दिनों तुम घर आए और दसा घर है क्या क्या खेती बाड़ी की सौगी जिया
0: दाल लाए होगा छलियां बाई हैं।
1: अच्छा छली मैं दिखा करता कि तुहां लगभग देसी छली बांध देते हो ना चिट्टी है लाल
0: चिट्टी भी है लाल भी है
1: कने एक और खास गल मैं देखी धारकंड के इलाके हाँ जी मैदानी इलाका देखे ना इतु अजकल छलिए बड़िया बीमारियां चलिया ना दिखा ये तू कुदरत दिखे सब कुछ है धारकंड जी छली है बिलकुल बंपर फसल पर चली है गुड़ाई करते तुहां कितने गुड़ देंदे
0: दो बारी करनी कई नहीं तो एक बारी तो करनी करनी है।
1: अच्छा बाकी इस इलाके च पानी की तो कोई कमी नहीं है ना
0: पानी बहुत
1: बरखा भरी है सारा है
0: करना माल दोने चले घर पर घर 12 महीने चले जाते
1: हैं। अच्छा धान लगाई धान कौन लगांदे
0: धान तो अजकल जड़ मर्जी लगा लो नव नव बीज चले।
1: अच्छा जेडे अपने देसी
0: देसी बंदे कई
1: जिया कोई चीनू हा या कुछ
0: आओ।
1: अच्छा और दसा ये अलावा जिया जी तुम छली दसी थी अपने घर का बीज बांधते हैं मैल वगैरह क्या पांदे खेतरां विच
0: डंगर दा बांदे बकरियां दा बांदे।
1: अच्छा बाकी यूरिया वगैरह नहीं है ना
0: सै कुछ की वगैरह नहीं
1: बड़ा घट है ना। देखा बड़ी अच्छी गल है देखा कि इन दिना आज दिन हाँ अंधा धुंध दवाइया का छिड़काव करा करते अपने खेतरां विच है ना हाँ यानी कि जहर खाने तो वधिया कि थोड़ा अनाज खाइए लेकिन एक सुथरा अनाज खाइए बांका हो है ना माल बच्छू क्या क्या पाले भेड़ा के अलावा और घर है अच्छा दांद पाले हुए ना जी। उत्तम जी इसके बाद गल करते जी तुम दसिया कि एक तो हाँ आपू करने सहयोगी रखियो माले बच्छू चारने ना
0: भेड़ा
1: जो क्या तनखा देंदे महीने
0: महीने 15,000।
1: अच्छा 15,000 देनी है ना बाकी जिन्हें रहने वाली है
0: खान खर्च सब मेरा।
1: अच्छा रोटी तुहां दा ही सारा है ना बाकी जिया फिर ते मुड़ के चलते तेसी वहां तो तेतु ते ना सोगी जिया कोई कुत्ते वगैरह भी पाले होने दाने अच्छा
0: जानवर
1: नहीं है इतनी दूर बाणा में रहना था क्या क्या तो जानवर डर रहा जी माल
0: मिर्ग सब कुछ है।
1: अच्छा बाघ होंगे है ना जी तुम दसिया कि 40 साल के अनुभव च कभी आमना सामना नहीं हो पालू करना
0: कई बार हो
1: अच्छा
0: और जंगला च रहना कई बार
1: दिन की राती
0: राती भी दिने भी कई बार।
1: अच्छा पालू जी यानी कि ज्यादा हमला राती करता है ना
0: दिने करी बंदा जे सुनिए मिलने को
1: अच्छा
0: बंदा ना हो
1: अच्छा यानी कि तो हां अपने अनुभव च ऐसा भी कभी देखे होना कि जिनकी बकरी पकड़ ली या
0: भेड़ बकरी छुड़ गई है कई बार।
1: अच्छा तो यानी कि डर नहीं लगता
0: डर तो लगता ना तो करनी है खाना दई है तो भाई
1: हां देखो ये भी बड़ा एक दमियाला दमियाला काम है कि रिछे ते या भागे ते उम्मे ते बकरी
0: दुआड़ी दी एक बोक ले गया बड़ो बढ़िया खाई गया
1: बोक क्या अच्छा छेलू है ना
0: छेलू बड़ा बकरा।
1: अच्छा नहीं मिलला है ना
0: मिल गया खड्डा मिलला
1: अच्छा
0: दखाया खड्डा था एक बकरी जींदी छडाई ली।
1: अच्छा
0: पकड़ी पकड़ी
1: हां देखा ये थोड़ी थी जिसी यहाँ बोल देना हाँ तो जितने पशु पालक है ना भेड़ पालक है ना तीन थोड़े दे ये जड़ा सा चिंता का विषय बनी जाता कि इतनी मेहनत करनी करना जल अगर पंजे छे महीने जो कि एक दो पैरू भी खाई अड़े तो तिथु जा रही पूरी जी आमदनी ही है ना
0: 50,000 तो चोर ले गए चोरी
1: सह कुतु ते
0: उन्ने दे।
1: अच्छा
0: 4 साल लगातार ही नीतियाँ 10-10, 12-12
1: इस साल तक नीति
0: साल तक नीति पिछले साल नीति।
1: अच्छा अच्छा यानी कि जंगली जानवर तो जड़ा सा आदमी का ज्यादा खतरा हो ही है ना
0: ज्यादा खतरा
1: यानी कि सर 10-12 बकरियां या भेड़ा तो खानी ले ये राती है कि
0: राती
1: कि ड्राई तो मकाई के ले ये
0: राती ड्राई के मंदाई भी ले जा देखे यानी यानी सारी है राती नीति पता नहीं लगना
1: जो तो हाँ सोई रहे होने हैं ना
0: सोई भी रहने थके रस्ते देखो एक दो ऐसी चीजें देना छिड़काई देंगे पता नहीं क्या करते कोई कुत्ते
1: अच्छा यानी कि बेहोश कर देना कुछ ऐसा कुछ छिड़काव कर देना ना ओहो जल तो हाँ जो प्यागा जागा आई होनी था ना
0: चल दिखनी है दाई
1: फिर पूछताछ भी एक ता करनी है
0: करनी राती गड्डी पानी पता कुदी कुदी नहीं आसी हम दिखनी है ब्याह करा उठी 7-8 बजे उन पर राती 12 लदी होनी है पता नहीं राती राती कुदा जा रहे
1: देखा सुत्ते बंदा ते तू रही आना ना गड्डी दे देना माल को तो बजाय देना ना कना ताली दे देना सा बड्डी टुक्की भी हड़े होना कटीते होना ना
0: ते होना
1: फिर भी यहां तो हां दी जेड़ी सा हिम्मत कना जज्बे जो जड़ा सा

0: सलाम करदे हन कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी जड़ा सा तुहां अपना जड़ा सा ये पारंपरिक जिसी अहां काम बोलदे ना भेड़ा बकरियां वाला ये रखे है। हाँ, तो जी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हें तुहां क्या सुनेहा देना चाहेंगे कि दिखा तिना दे भी जिन्हां दे अपने पुश्तैनी माल धान है धान दिनों दिन जड़े से घटा दे हैं, क्या कारण है?
1: चार दिन अजकल लोग पढ़ी लिखी गए बकरियां
0: गांव जी युवा पीढ़ी है ना तेने क्या बोलना चाहेंगे तो हाँ कि सह अपने माले कि संभालना सह भी
2: सह नहीं संभाल सकते कि संभालने
0: अच्छा
2: हूँ साढ़े मुंडे ने बोलते बेचो नहीं जाना वहां बुढ़े जाने तो बेचनी है पता पानी हो जाए
0: कुल मिलाई के बोली सकते कि अगर तिना वाला अपनी विरासत है। हाँ अजकल जड़ा जमाना सह थोड़ा आधुनिक हो ही है, नौकरी भी जड़ा सह एक जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर जितना ज्यादा हो सकता सहयोग करावे अपने घर आने का
2: ना नौकरी सारे थोड़ी मिलती कोई मुकद्दर वाले मिलते
0: खुशी। हाँ जी उत्तम जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी अपने भेड़ बकरी पालन के अनुभव अहां कन्ने सांझा किते अपना कीमती समय अहां जो दित्ता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
3: किसान साथियों आशा करने कि इस जानकारी तो जरूर लाभ लेना है
4: जी
3: और खास तौर पर देखा कि अहां पहले भी गलबात करा करते हैं पंच साहब की असा जेड़े भेड़ पालक हो गए बकरी पालन करने वाले हो गए
4: हाँ जी
3: कितनी से मेहनत करते हैं है ना
4: बिल्कुल
3: बड़े बड़े मतलब पहाड़ियों से जाते हैं और देखा कि भाई
4: बारिश हुई बर्फबारी है
3: कई बार जंगली जानवर का भी डर रहा
4: कई बार
3: बीमारियां लगी आदि
4: सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना
3: बिल्कुल बिल्कुल ता चलो साड़ा ये पुश्तैनी काम है और असा दे सियाने बुजुर्ग करते थे इस काम जो
4: जी जी
3: और अगे भी सांझो ये काम के भी करना चाहिए है ना
4: बिल्कुल और इस दे कन्ने हां जो लगातार जुड़ी के रहना चाहिए और हां जो पूरी मेहनत कन्ने जेड़े से इना कम कन्ने जुड़ना चाहिए और काम जेड़े से करना चाहिए है ना
3: बिल्कुल
4: ता इसके बाद हुन हां चलना कांगड़ा सब्जी मंडी दी तरफ और आज दे जेड़े सड़े सब्जियां दे भाव ने से कुछ इस तरह ने सब तो पहले गल करी आलू 10 ते 20 रुपये प्रति किलो प्याज 52 ते 55 रुपये प्रति किलो टमाटर 20 ते 26 लसुन 180 ते 200 अदरक 120 ते 130 शिमला मिर्च 50 ते 60 रुपये प्रति किलो अरबी 28 ते 30 खीरा 25 ते 35 रुपये प्रति किलो मटर 100 ते 120
3: जी जी
4: फुल गोभी 60 ते 70 रुपये बंद गोभी 30 ते 32 रुपये बैंगन 22 ते 25 रुपये कद्दू 15 ते 18 मूली 20 ते 30 रुपये प्रति किलो कन्ने हरा पालक 35 ते 40 हरी मिर्च 40 ते 50 धनिया 170 ते 180 तोरी 15 ते 20 रुपये प्रति किलो भिंडी 30 ते 32 रुपये प्रति किलो घीया 25 ते 50 रुपये करेला 18 ते 25 रुपये फ्रास बीन 65 ते 70 गाजर 30 ते 32 रुपये प्रति किलो मशरूम 190 ते 200 रुपये और इस दे कन्ने ही गल करिए फलां दी तां फलां च सेब रे है 40 ते 180 रुपये प्रति किलो केला 40 ते 50 रुपये प्रति दर्जन अनार 100 ते 110 रुपये प्रति किलो अनानास 40 ते 45 अमरूद 100 ते 110 मौसमी 40 ते 50 पपीता 40 ते 50 और इस दे कन्ने नींबू की गल करिए 100 ते 110 रुपये प्रति किलो नाशपति 70 ते 100 कीवी जेड़ा से 35 ते 37 रुपये पर पीस दे हिसाब ने रहा और अंत च माल्टा जेड़ा से 100 ते 110 रुपये प्रति किलो दे हिसाब ने अज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे न
3: जी जी
4: तो इसके बाद हूँ गल करनी है मौसम की तो मौसम तो देखो अज भी जेड़ा से मौसम खुशनुमा कने अच्छे जेड़ी से धुप खिले रही और गल करिए तापमान की तो तापमान च सब तो पहले गल करिए धर्मशाला की तो धर्मशाला का न्यूनतम तापमान अज 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जड़ा से 28 डिग्री सेल्सियस है कन्ने गल करिए चंबा दी तो चंबा च आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 कांगड़ा च आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस ऊना की गल करिए इतों जड़ा से अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जड़ा से 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जड़ा से 34 डिग्री सेल्सियस जड़ा से रे है
3: जी ता किसान साथियों मौसम जो ध्यान च रखी करी ही अपने यहाँ खेत खिलाना दे जड़े कामकाज कैन भी करने न
4: जी
3: ता फिर दे यहाँ शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत ता सारे सुन दे रली मेली ये लोकगीत

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
4: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
3: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
4: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में दो साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या हुई स्थिर। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 रोगी पहुंचे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश विधानसभा में आज भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध रहा जारी। सत्र के पहले दिन की फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ई मार्ट का किया शुभारंभ। महिलाओं को ऑनलाइन उत्पाद बेचने में मिलेगी मदद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में दो साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या लगभग स्थिर हुई है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में प्रश्नकाल में विधायक विनोद कुमार के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 से 2026 की अवधि में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 कैंसर रोगी इलाज के लिए पहुंचे। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले 1500 करोड़ के विशेष आपदा पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर आज तक राज्य को ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। केवल सिंह पठानिया

0: यही सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से 775 अधिक कैदी मौजूद हैं और राज्य में कुल 14 कारावास हैं। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही ना चलने देने के आरोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: विधानसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों पक्षों सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। भाजपा विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता सरकार पर 3 अटैची दिल्ली भेजने व 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में रखने के आरोप लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदन चलाना और जनता के मुद्दे उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाग रही है।
2: हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और स्थिति ये बन गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचे।
1: वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष देश में महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो।
3: पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य प्रदेश में इसमें बने हुए इनके खिलाफ, ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं।
1: विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह जहां विपक्ष बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार इन मुद्दों पर पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में अटैची लेकर किए गए प्रदर्शन पर कहा कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटैची की राजनीति की शुरुआत भाजपा ने की थी और आज वही लोग भ्रष्टाचार के नाम पर नाटक कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में किसी मंत्री या मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है।
4: प्याज के दाम से ध्यान बढ़ाने के लिए ये टैची, 2 टैची, 3 टैची, 5 टैची, 7 टैची, टैची तो हम बता रहे हैं ना, जितने मर्जी टैची लाए, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज ही भर के लाते इन टैचियों में और जनता को बांट देते तो ही अच्छा होगा। चीनी भर के लाते इन टैचियों में जो आज उठाकर चले हुए। हम तो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। आपकी तरह नहीं कि टैची भर के 9 MLA खरीद लिए और वो भी प्रूफ है हमारे पास। तो अभी तो कई चीजें जनता की अदालत में आएगी, जनता तय करेगी कि क्या सच्चाई है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध जारी रहा। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से पहले दिन की कार्यवाही की वीडियो क्लिपिंग जारी करने की मांग की। सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान होगा, जबकि सत्र के समापन में राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा और वीडियो क्लिप भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं को कोई डायरेक्शन नहीं आई है और राष्ट्रगान की परंपरा पहले से चली आ रही है। इस दौरान विपक्ष ने सदन के भीतर राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन हुए राष्ट्रगान की फुटेज देने की मांग की, लेकिन फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष

0: अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था में कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।
1: हम चाह रहे हैं सदन चले, लेकिन सदन चलने से पहले जो हॉनेस्ट कमिटमेंट विधानसभा अध्यक्ष मोदी जी ने की है कि हम आपको वो क्लिपिंग जो है वो रिकॉर्ड की वो दे दें, लेकिन आज देने से मना कर दिया। अभी तक मैं बाद अब कहा कि मैं बाद में उसको एग्जामिन करूंगा, उसके बाद देखो कितना समय लगेगा। आज चार दिन हो गए उसको एग्जामिन करते करते, उसके बावजूद भी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इसका मतलब है कि जो बोला गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय गान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके, वो झूठ था, वो साबित हो गया, वो सरासर झूठ था। और अध्यक्ष उनके झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज हम सदन से वॉकआउट करके बाहर।
0: दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है, इसलिए बार बार अवरोध डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को जहां भी कार्यक्रम हुए वहां पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और फिर राष्ट्रगान गाया गया, लेकिन राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है।
2: ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए, उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती, यहाँ पे संविधान लागू होता है। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ई मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई मार्ट सुविधा हिमाचल में नई शुरुआत है और प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ई मार्ट मददगार बन रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ई मार्ट के माध्यम से प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से अपने उत्पाद बेचने का मंच प्रदान किया जा रहा है।
3: ई मार्ट एक नई शुरुआत है हिमाचल के अंदर। प्रदेश में हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक अच्छा प्रयास इसके माध्यम से करवाया जा रहा है। इसमें हमारी जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे प्रदेश के अंदर है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट्स को केवल हिमाचल में नहीं मगर पूरे देश के अंदर जो है वो बेच सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, उनको पैकेजिंग सही रूप से करके को इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में मार्केटिंग करने का प्रयास किया जाएगा।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत में लोगों को पिछले लगभग 10 महीनों से खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन नहीं मिला है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों को पिछले वर्ष अक्टूबर माह में राशन दिया गया था और उसके बाद अभी तक खाद्य सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राशन उपलब्ध न होने से शौर पंचायत के लोग कुल्लू मंडी से खाद्य सामग्री लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। निहाल सिंह भारद्वाज ने प्रदेश सरकार और पांगी प्रशासन से जल्द खाद्य सामग्री मुहैया करवाने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में 2 साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या हुई स्थिर। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 रोगी पहुंचे। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश विधानसभा में आज भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध रहा जारी। सत्र के पहले दिन की फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ई मार्ट का किया शुभारंभ। महिलाओं को ऑनलाइन उत्पाद बेचने में मिलेगी मदद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना अनुसार बाल विकास परियोजना मंडी सदर के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है मगर इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु उम्मीदवार कम से कम 10.2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आपको पुनः बता दें, बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी के आंगनवाड़ी केंद्र मगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन 8 सितंबर 2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के दूरभाष नंबर 01905225540 पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर आपको पुनः बता दें, बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी का दूरभाष नंबर है 01905225540। रोजगार
8: 4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी।
7: लेखक है पंकज शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता पंजाब केसरी और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल।
9: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कुछ समय के लिए सदन में सियासी सरगर्मी देखने को मिली। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को व्यवस्था देने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के ऊपर राष्ट्रीय गान को लेकर लगाए गए निराधार आरोपों का जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक भाजपा शांत नहीं रह सकती। जयराम ठाकुर का कहना था कि विपक्ष सिर्फ इतनी सी मांग कर रहा है कि मॉनसून सत्र के शुरू होने पर गाए गए राष्ट्रीय गीत की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाए या इसे सदन में सबके सामने दिखाया जाए ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग सदन की प्रॉपर्टी है और उसे उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पर कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर ही लड़ाकर रख दिया है। विधानसभा पहले से स्थापित परंपराओं के आधार पर चलती है जिसमें अध्यक्ष के आदेश सर्वोपरि होते हैं। हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि श्रीराम मंदिर विवाद और महंगाई जैसे विषयों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष ऐसे विषयों को उठाकर बिना कारण गतिरोध पैदा करना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अनुमति मिलने पर

का प्रयास कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसके बाद व्यवस्था देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि सत्र की शुरुआत पहले की तरह राष्ट्रीय गान से हुई है तो समापन राष्ट्रीय गीत से होगा। सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रीय गीत पूरा गाया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष राष्ट्रीय गान को लेकर जिस रिकॉर्डिंग की मांग कर रहा है उसको उपलब्ध करवाने में कोई हर्ज नहीं है तथा वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विधानसभा सचिवालय को राष्ट्रीय गीत के गायन को लेकर किसी तरह के निर्देश नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय के बाद फहराया जाता था तथा सूर्य अस्त से पहले उसे उतार दिया जाता था। आज तो हर घर तिरंगा अभियान ने इसके मायने बदल दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद विपक्ष जब फिर से अपनी बात पर अड़ा रहा तो अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष विरोध स्वरूप सदन से बाहर चला गया। प्रश्नकाल शुरू होने पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार स्क्रैप सामान को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक हरदीप सिंह बावा की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि गुज्जर शब्द को लेकर जो जानकारी मांगी गई है उसकी विस्तृत सूचना जुटाई जा रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक राकेश काले की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिला में प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के परीक्षण को लेकर प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। विधायक केवल सिंह पठानिया की तरफ से पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिछली प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज की एवज कुछ नहीं मिला है। प्रश्नकाल समाप्ति से कुछ समय पहले विपक्ष के कई सदस्य सदन में आए। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक डॉक्टर हंसराज की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि सरकार बरसात के बाद 800 किलोमीटर सड़क की टारिंग करेगी जिसके ऊपर 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रश्नकाल की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की तरफ से नियम 67 और अन्य नियमों के तहत मिले नोटिसों की जानकारी सदन को दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बेरोजगारी से जुड़े विपक्ष के प्रस्ताव को इस आधार पर नियम 67 के तहत अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाजपा के कई अन्य विधायकों ने इसी विषय को लेकर अन्य नियमों के तहत नोटिस दिए हैं। इस पर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नियम 67 के तहत सिर्फ उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 को मजाक बनाकर रख दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष पर भी आक्षेप कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारी से जुड़े विषयों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार अपने शेष बचे कार्यकाल में चुनाव के समय की गई सभी गारंटियों को पूरा करेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसके बाद स्पष्ट किया कि नियम 130 के तहत चर्चा के दौरान विपक्ष अपने विषय को उठा सकता है। इसके बाद शून्यकाल में विधायक हरदीप सिंह बावा ने नई ऐप के कारण पुलिस जवानों को हाजिरी लगाने में आ रही परेशानी का विषय उठाया। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस जवानों को वाहन की उपलब्धता की प्रक्रिया को आसान करने की मांग की। विधायक आरएस बाली ने करुणामूलक नियुक्ति से जुड़े विषय को उठाया तथा ग्रुप डी के तहत भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर कहा कि सरकार शीघ्र इसको लेकर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साप्ताहिक कार्यसूची को लेकर वक्तव्य दिया। इसके बाद विधानसभा सचिव की तरफ से राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से स्वीकृत विधेयकों की प्रतियां सदन पटल पर रखी गईं। उप मुख्यमंत्री ने शिमला की सड़कों के उपयोग और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन से जुड़े अध्यादेशों की प्रतियां पटल पर रखीं। इसके बाद नियम 62 के तहत विधायक विनोद सुल्तानपुरी और इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने अपने विषयों को उठाया। वहीं नियम 130 के तहत भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने चर्चा की शुरुआत की और प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता, रिक्तियां व स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गंभीर नहीं है। विपिन परमार ने कहा कि बात आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की कही जा रही है लेकिन धरातल पर स्वास्थ्य

0: सेवाओं के हाल बेहाल हैं। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल थुरल का मामला भी उठाया, साथ ही कहा कि जो घोषणा कांग्रेस ने संकल्प पत्र में की है वो धरातल पर नहीं दिख रही। विधायक नीरज नैयर, डॉक्टर जनकराज, पवन कुमार, राम कुमार ने चर्चा में भाग लिया। नियम 130 के तहत सदन में जारी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सरकार को धमकाना बंद करे। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार किसी को नहीं बख्शेगी और एक एक परत खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और कांग्रेस सरकार ईमानदार व पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ओर से दी गई चार्जशीट पर सरकार जांच करवा रही है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में कई लोगों ने उनके लिए गड्ढे खोदने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भगवान के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बने, इसलिए किसी के दबाव में आने का सवाल ही नहीं है। सुक्खू ने कहा कि सरकार 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी। इसके तहत 2 लाख परिवारों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां और आगामी योजनाएं गिनाते हुए कहा कि मार्च तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के रिक्त पद भर दिए जाएंगे। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 300 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए मरीज से करीब 30,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से 90,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना की जांच भी विपक्ष के कहने पर करवाई गई। जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां 4 पुरुषों के लिए बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बनाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसी अत्याधुनिक ऑटोमेशन लैब स्थापित की जाएगी जैसी सुविधा पीजीआई में भी उपलब्ध नहीं है और फिलहाल देश में ये सुविधा केवल दिल्ली में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमियाणा, आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेजों को देश के बेहतरीन चिकित्सा संस्थानों में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी और प्रदेश में व्यवस्था को पारदर्शी व जवाबदेह बनाया जाएगा। इसी के साथ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: विधानसभा समीक्षा अभी आपने सुनी। लेखक थे पंकज शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता पंजाब केसरी, और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
2: अरे वाह, न्यू कार प्रमोशन।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सबरस कार्यक्रम में, लीजिए सुनिए पंकज उदास का गाया हुआ ये गीत।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान। कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत हमने लिया है फिल्म योद्धा से। इस देशभक्ति गीत को गाया है बी प्राक और साथियों ने।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छत छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को

0: 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है और 2047 तक इसके 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
2: भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे

0: मतदाताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना

0: में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade, and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. The Russian President credited

0: श्रोताओं, खयाम साहब का पूरा नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी था। उनका जन्म 18 फरवरी सन 1927 को पंजाब के राहू में हुआ था। संगीत के प्रति बचपन से ही उनका लगाव था और संघर्ष करते हुए उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। उनकी प्रमुख फिल्मों में कभी कभी, उमराव जान, नूरी और त्रिशूल शामिल हैं। फिल्म कभी कभी में साहिर लुधियानवी की शायरी और खयाम के संगीत का खूबसूरत मेल देखने को मिला। वहीं उमराव जान के संगीत में उन्हें कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
1: कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

श्रोताओं, खयाम साहब का संगीत तेज शोर की बजाय ठहराव, सादगी और शब्दों की खूबसूरती पर आधारित था। यही कारण है कि उनकी धुनें आज भी श्रोताओं को उतनी ही पसंद आती हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। 19 अगस्त सन 2019 को खयाम साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हमारे बीच जीवित है। कहते हैं कलाकार चला जाता है, लेकिन उसकी कला हमेशा जीवित रहती है। खयाम साहब इसका एक खूबसूरत उदाहरण हैं।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए करनैल राणा की गाई हुई ये माता की भेंट।

0: आए कौन।
1: श्रोताओं, ये लोकगीत जो कि भरमौरी लोकगीत था, आपने सुना महेंद्रू राम का गाया हुआ।
2: मेरा खेलंदा खेलंदा आया ओ जी, हाय घुंघरू मेरा खेलंदा।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप हमें इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का जो नंबर है वो एक बार सुन लीजिए, 01892224391, 01892224391। और एक बता दें आपको कि जो फिल्में हमने आज रखी हैं उनके नाम आनंद, असली नकली, बहू, बेगम, बाजार, बेताब, बॉबी, चलते चलते, दीवार, दिल चले, दो रास्ते, डॉन, दोस्ती, एक फूल, दो माली, गैम्बलर, खिलाड़ी, लाल बंगला और प्रेम पुजारी। तो लेते हैं कार्यक्रम की पहली फ़ोन कॉल।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत है। बताइए, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में?
1: बस अब खेती बाड़ी काम है भैया अपना। तो
0: जी, और आजकल कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बादलों से ढका रहता है भैया, बाकी बारिश थोड़ा सा कम है।
0: अच्छा, यहाँ तो बारिश काफ़ी है।
1: जी अब
0: बताइए
1: उम्मीद करते हैं सब जगह बराबर होगा,
0: जी, बताइए फिल्म का नाम बताइए।
1: बेताब से सुनवा देंगे।
0: जी, बेताब से। तो कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। सुनवाते हैं
1: धन्यवाद।
0: आपको आपकी पसंद की फ़िल्म का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हेलो,
1: हेलो गौरव जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप सर? और सुनाइए, बड़े दिनों बाद।
1: बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए।
2: पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया।
1: हेलो संजीव जी, अपने को सॉरी गौरव जी।
0: जी जी सर, आपकी
1: क्या चल है और सुना के?
0: बढ़िया सर, आपका फोन कॉल होल्ड हो गया था।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, और सुनाइए ठीक ठाक हो?
0: जी जी,
1: तकरीबन सोमवार को आप ही का गौरव जी नंबर लगता है शाम।
0: जी, इस बार तो बड़े दिनों बाद लगा।
1: बड़े दिनों के बाद, वही मैं कहना चाहता था कि बड़े दिनों के बाद अपना नंबर लगा है।
0: जी जी, आप फिल्म का नाम बता दीजिए पहले, कई बार क्या होता है।
1: फिल्म देखिए, फिल्में तो सभी अच्छी हैं, तो मैं क्या सुनूं, एक फूल दो मालिका वो सुनो, वक्त के खेल निराले मेरे भैया, वक्त का लिखा कौन टाले मेरे भैया।
0: जी जी,
1: ये बहुत, वैसे तो वो बॉबी का फिल्म का भी अच्छा है, नरेंद्र चंचल की है
0: जी।
1: वो दिल किसी का ना तो मंदिर मस्जिद तोड़ो, दिल किसी का ना तोड़ो, वो भी अच्छा फिल्म का गाना है।
0: तो कौन सा
1: गाने सभी अच्छे हैं, लेकिन आप ऐसे एक दो फूल लव मालिका सुना दीजिएगा।
0: जी जी जी,
1: और
0: सुनाइए क्या चल रहा है आजकल, बारिशें हो रही
1: है? बस ठीक चल रहा है, मौसम जो है मौसम के हिसाब से चल रहे हैं। मौसम अब बरसात का है, तो बरसात कभी आंख मिचोली करती है, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती
0: जी।
1: कभी जब धूप खिलती है तो इतनी गर्मी होता है, तपस होती है, जिसको हुमस भी कहते हैं हम
0: जी।
1: तो बरसात जो होती है ऐसे कम कम हो रही है
0: जी।

0: बाकी यहाँ हो रही है, जहाँ भी हो रही है वहाँ वो बहुत ज्यादा हो रही है, उनको लिए तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे जहाँ तो ठीक ठाक ही है।
1: जी कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका धन्यवाद। सुनवाते हैं एक फूल
0: धन्यवाद गौरव
1: वाली
0: जी,
1: सी गीत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरकावा उत्तर प्रदेश से। मुझे अपनी पसंद का कोई फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, बढ़िया सी।
0: जी जी क्या करते हैं आप?
1: मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ सर जी, और मैं चूड़ियाँ बेचता हूँ, हरी भरी पीली चूड़ियाँ बेचता हूँ, और लिपस्टिक है, बिंदी है, इंगरो है, ये चीज़ें
0: क्या
1: बेचता थोड़ा
0: दुकान है
1: बहुत।
0: आपकी?
1: हाँ दुकान है ये, बेचता रहता हूँ।
0: जी जी कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, बात करके अच्छा लगा। सुनवा रहे हैं दीवार फिल्म से ये
1: हाँ
0: गीत।
1: आपको चाहिए तो आप बता सकते हो।
0: जी

0: आपको जैसे पाउडर वगैरह चाहिए लगाने के लिए तो आप ले सकते हो आके।
1: जी कोई बात नहीं जी, जरूर
0: ठीक है, गाना सुनवा दीजिए।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार जी, राम राम।
0: ज़रा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी।
1: नमस्कार जी, राम राम। पंच
0: राम राम जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: ऋषि लाल
0: कहाँ से? पंचरुखी?
1: पंचरुखी।
0: अपना ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं रिटायरमेंट हो जी।
0: जी, बहुत ही बढ़िया है। और आजकल क्या काम लगाया है?
1: मेरे पास कुछ नहीं, ऐसे ही है।
0: जी, बताइए, फिल्म का नाम बताइए।
1: सारे फिल्म कौन सी सारे?
0: प्रेम पुजारी, लाल बंगला, खिलाड़ी, गैम्बलर, दोस्ती, डॉन, दो रास्ते, दिल जले, चलते चलते। हाँ जी,
1: दो रास्ते।
0: दो रास्ते कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: खुशियों की बरसात सी हो जाती है,
0: जी
1: खुशियों की बरसात सी हो जाती है जब आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र में हमारी बात सी हो जाती है। गौरव जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार। नाम बताइए अपना, और बहुत ही सुंदर
1: मैं
0: शायरी
1: सर
0: बोली
1: जीत
0: आपने।
1: मंडी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव गट्टा से चांद राम बोल रहा हूँ सर जी।
0: चांद राम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और पहले फिल्म का नाम बता दीजिए
1: डॉन फिल्म का सुनना है सर।
0: जी। आप बताइए अपने बारे में
1: सर मैं खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हूँ और
0: जी।
1: साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता हूँ।
0: जी और खेती बाड़ी काहे की करते हैं आप?
1: सर मैंने पहले टमाटर लगाए थे, अभी गोभी की तैयारी है सर। बढ़िया
0: जी। और कैसी होती है फसल?
1: सर।
0: जी।
1: जी,
0: और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्या आप ठीक करते हैं?
1: जो एलईडी वगैरह होते हैं सर,
0: जी।
1: हाँ उनकी रिपेयरिंग पर टफ होता जा रहा काम आजकल।
0: अच्छा जी, कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपको सुनवाते हैं डॉन फिल्म से ये गीत।
1: धन्यवाद सर।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हेलो।
2: हेलो जी सर, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
2: जी सर लक्की बात कर रहा हूँ।
1: कहाँ से लक्की जी?
2: जी सर देहरी से कर रहा हूँ, देहरी से।
1: देहरी से। और

0: फिल्म का नाम बता दीजिए। अनंत
1: फिल्में कौन सी यार, मैंने सुना नहीं है अभी।
0: असली नकली बहू बेगम बाजार बेताब बॉबी चलते चलते दिल जले दो दो रास्ते तो हो गई है।
1: सर बेताब का सुना दीजिए सर
0: बेताब हो गई है सर,
1: जी। ये
0: बेताब हो गई है।
1: कौन सी बजी और बजी है को देखते हैं।
0: गैम्बलर खिलाड़ी प्रेम पुजारी लाल बंगला बॉबी चलते चलते दिल जले असली नकली और बाजार और आनंद और बहू बेगम
1: सुना दीजिए कोई दिल जले का सुना दीजिए तो बच्चे कौन सी
0: दिल
1: मैंने
0: जलेगा।
1: चलो
0: ठीक है जी, कार्यक्रम में फ़ोन किया आपने, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
3: कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
3: वो है कौन?
4: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
2: नाम?

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए।
2: सर जी, मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
1: जी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
2: फिल्म सर प्रेम पुजारी का सुना दीजिए, शोकियों में घुला जाए।
1: जी, और क्या करते हैं आप?
2: हमारी सर जहाँ सिटी में पेंट की शॉप है।
1: जी जी, पेंट की शॉप है। और मौसम कैसा है जलंधर में?
2: मौसम सर अभी तो बीच में जब बारिश होती है तो फिर तो मौसम सही हो जाता है।
1: जी,
2: हुमस बहुत ज्यादा है अभी इधर पंजाब में, हुमस हो जाती है ना।
1: जी जी,
2: फिर बहुत गर्मी, गर्मी तो वैसे टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लगती है हुमस में।
1: जी जी
2: सर,
1: कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका धन्यवाद। और
2: यहाँ मौसम कैसा है?
1: यहाँ तो बारिश हो जाती है, आज नहीं हुई है लेकिन हो जाती है।
2: हमारे तो कभी ऐसा है ना कि एक से 10-15 किलोमीटर दूर में बारिश हो जाए ना तो दूसरी

0: साइड में फिर हुमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे हो जाती है। जी
1: जी
0: सर,
1: जी फ़ोन किया आपने, आपका धन्यवाद।
0: मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक
1: सुनवा रहे हैं प्रेम पुजारी फिल्म से आपकी पसंद का ये
0: है,
1: गीत।
0: मेहरबानी, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
1: सर, मैं अमर सिंह बील बोल रहा हूँ, छपरा राजस्थान से। क्या
0: राजस्थान से अमर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते सर?
0: काहे की खेती करते हैं?
1: जी, मक्का
0: खेती कौन सी करते हैं, किस चीज़ की?
1: की सर, मक्का की खेती है अभी तो
0: जी। और राजस्थान में क्या मौसम है, कैसा है?
1: सर, बारिश हो रही है यहाँ पर तभी।
0: अच्छा, अभी बारिश हो रही है वहाँ?
1: हाँ, अभी बारिश हो रही है।
0: जी। और धर्मशाला में बारिश नहीं हो रही है अभी?
1: जी सर, नहीं हो रही है, यहाँ तो हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है सर।
0: राजस्थान में तो बारिश कम होती है
1: नहीं सर, अपन एमपी साइड मारा है थोड़ी, सीमा
0: जी।
1: पे, अपन सीमा पे एमपी के राजस्थान की पे
0: ओ, अच्छा,
1: बॉर्डर पे है अपन।
0: बॉर्डर पे।
1: जी
0: आपके गांव का नाम क्या है?
1: जी छबड़ा राजस्थान, छबड़ा
0: छबड़ा,
1: उत्तर।
0: राजस्थान। बॉर्डर कितनी दूर है?
1: नहीं, बॉर्डर तो दूर है, लेकिन एमपी की मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान मतलब सीमा पे अपन।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर।
1: जी,
0: ठीक। और फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: सर हमें दिल तो पागल है टाइटल सॉन्ग सुनना है सर।
0: सर, हमने फिल्मों के नाम रखे हैं, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा।
1: जी, बताइए सर।
0: आनंद, असली नकली, बहू बेगम, बाजार, बॉबी, चलते चलते
1: चलते चलते सर।
0: चलते चलते। जी, कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे, और श्रोता हमें फोन कर रहे हैं और लेते हैं कार्यक्रम की अगली फोन कॉल। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो सर जी,
0: जी
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: जी। मैं अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से। अविनाश
0: त्रिपुरा से नाम क्या बताया?
1: जी
0: अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इतनी दूर से आपने फोन किया है, और पहले आप फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: गैम्बलर मूवी से सुना दीजिएगा।
0: क्या बात है, देव साहब का गैम्बलर मूवी से। और आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर जी बस कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा वेल्डिंग का काम है
0: वेल्डिंग का काम है, बहुत ही बढ़िया।
1: जी सर, जोड़ने का काम है, अच्छा लगता है।
0: और हमारे कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी, बिल्कुल सुनते हैं। और इसमें जो फ्राइडे को आते हैं 9 बजे, वो जो टॉपिक वाला, वहाँ पर भी फोन लगाते हैं। और संडे को भी आते हैं, तो इन सब कार्यक्रम में मुझे ज़्यादा हिस्सा लेना अच्छा लगता है, क्योंकि जब टॉपिक वाला कोई विषय रहता है तो वहाँ पर हम लोगों को बोलने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मौका मिलता है यहाँ से।
0: जी, तो सुनवाते हैं आपको गैम्बलर फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका शुक्रिया।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना, समय कम है, जल्दी बोलिए।
1: डिंपल कुमार बोला सिरा से। हाँ
0: सरा से डिंपल कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हाँ, ता नेड़े दी है ना,
1: जी हाँ जी,
0: और क्या कर दे तो हाँ।
1: मैं जॉब का तो डिपो हूँ।
0: ओ वहाँ पहले भी कितने फोन एक बारी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ जी हाँ जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: फिल्म का नाम तो सीधे फटाफट हूँ,
1: बॉबी फिल्म
0: बॉबी फिल्म।
1: जी
0: ठीक है जी, रखा फोन, टाइम घाटा है।
1: ठीक है ठीक है।
0: ठीक है।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने